0: तुम बड़ी अच्छी आई। ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो।
1: चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली,
2: मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ, पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी।
0: हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। ना, जाओ नहीं, बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है।
1: चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वो बोली,
2: मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
0: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो।
2: मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें।
0: प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए है? माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया।
1: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वो बोली,
2: मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं।

0: माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? दो दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
1: भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो?
0: मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती।
1: तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूं सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूं।
0: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए।
1: चिड़िया, तू मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ।
0: तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वो तुम्हारा माला माल होना चाहिए?
1: अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना, उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
0: वो सोना क्या चीज होती है?
1: तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया, तो इस बात को समझती क्यों नहीं?
0: मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी।
1: ठहर ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनत।

0: गिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं, वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती हा? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यही रह।
1: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे मुझे यह देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो। रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी।
0: अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो।
2: ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे,
0: तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोजाना।
2: ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे,
0: सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं?
1: दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है।
0: हाँ जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है।
1: सेठ, मुझे देर हो रही है।
0: देर अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो।
1: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
3: देखते क्या हो, यही मौका है, पकड़ लो इसे।
4: जी मालिक।
2: इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी।
0: हाथ से निकल गई।
2: नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो

0: एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी।
1: माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा,
2: क्या है बच्ची? क्या हुआ बेटा, बता बेटा। ना, ना, ना।
0: पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही।
1: बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम चिड़िया की बच्ची। तो श्रोताओं, अब हमारा कार्यक्रम यानी उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार,
4: नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: सुनिले प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

104.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक आज शनिवार 1948 शताब्द ज्येष्ठ 30 दिन इंग्राजी 2026 मसीहा जून मास 20 तारीख स्टूडियो घटी समय वर्तमान 5:58:30 आमर अगणित श्रोता बंधु मानंकु प्रभाती अभिवादन जणाई आरंभ करूछु आजर कार्यक्रम।

0: ନୂଆ ସକାଳ ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ଆସିଛି, ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଘଡ଼ିରେ ସମୟ ସକାଳ 6 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଣିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ, ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में

0: पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और स्वदेश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17-19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइस थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में चौथे स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ଶୁଣୁଥିଲେ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରିଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।

परम ब्रह्मंकर श्री रूप ही प्रभु जगन्नाथ तांक कृपा हेले अंधवी दर्शन करी पारे तांको अंतरर आखिरे से दर्शन करी पारे महाप्रभु को स्पर्श मध्य अनुभव करी पारे आउ भक्त कंठरु सेतबले छड़ी पड़े प्रभुंक नामगान जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।

जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतुमे। जिमिती आत्मा को छाड़ी शरीर परिकल्पना करी हुए नी, ठीक सेमिती प्रभु जगन्नाथ को छाड़ी जीवन कल्पना करी हुए नी। भक्तर भक्ति रे सिए से ही आमरी महाप्रभु, से ही सत्य, से ही शिव, से ही सुंदरा।

जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। दारु ब्रह्म जगन्नाथ से भक्तर भगवान, जगतर नाथ से अनाथर नाथ से ही पुणी महाबाहो। तंक भक्ति भावरे बुड़े केते जे भक्त तंक कृपा लाभ करिछन्ते। से दयार सागर करुणार महासागर हृदय रे तंकर, आउ निज भक्ति भावरे तंक भक्ति भावरे जदि आमे निजक हजि दियंती तेबे तंकर कृपा आमको मिले थाए। भक्त को सी सदा सर्वदा कोळी नियंती।

श्रोता बंधु वर्तमान आपने शुणुले अति बड़ी जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद भागवतर बास्तुरीतम अध्याय अध्याय पितार संपादन करथिले डॉक्टर विचित्रानंद महांती पूर्वाभास रचना डॉक्टर दासरथी दास संगीत परिचालना ताराकांत पंडा वर्णना बसंत महांती एवं प्रयोजना सुहास महांती।

0: प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
2: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इक्कीस जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: सबका प्यारा
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इक्कीस जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: सबका प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इक्कीस जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान, पीएम किसान।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
0: अन्नदाता का बढ़ता मान, पीएम किसान।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम

0: बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
1: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दासगुप्त के साथ काशफी नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
4: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
3: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल एक से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक

0: की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत हैं जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
0: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय, दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों की सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली पनाहगाह, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का ये बयान अमर उजाला में है।
0: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। वरिष्ठ भारतीय नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। और सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi to inaugurate and lay foundation stone of development projects worth over 47,000 crore rupees in Odisha's Mayurbhanj district today. Prime Minister Modi to release 23rd installment of the PM Kisan to over 9 crore farmers from Hooghly in West Bengal. Senior Indian bureaucrat Vivek Agrawal appointed as Vice President of Financial Action Task Force FATF. New Delhi reiterates its commitment to combat terror financing. NTA to conduct nationwide mock drill today ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. SEBI clears channel for easier transfer of shares to legal heirs of deceased investors. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in third and final ODI of the series in Chennai this afternoon. In a rare confluence of constitutional leadership and developmental vision, Prime Minister Narendra Modi is visiting Odisha this morning, where he will join President Draupadi Murmu in her home district of Mayurbhanj. The visit coincides with the President's 68th birthday and the celebrations marking 2 years of the Odisha government. Our correspondent reports from Rairangpur.
3: In a rare and significant engagement, the President and the Prime Minister will jointly offer prayers at the sacred Santhali Jahera and Ho Jahera groves and visit local educational and skill development institutions, underscoring the nation's commitment to the empowerment of tribal communities. Later, the two leaders will participate in a grand public program at Rairangpur, marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led Odisha government. Development projects worth more than 47,000 crore rupees will be inaugurated by the Prime Minister and foundation stones laid across key sectors including energy, transportation, health, education, irrigation and industrial infrastructure. President Murmu and Prime Minister Modi are also scheduled to address a massive public gathering. Prakash Das from Rairangpur, Akashvani News.
2: Prime Minister Modi has extended greetings to President Murmu on her birthday. Mr. Modi said that the President's journey marked by courage, simplicity, humility and an unwavering commitment

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की

आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

रेनबो एसएमएस कार्यक्रम शुणुंट आपण मैंने ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कडक दिल से दिल तक सो आजर परवर्त गीतटी आपण बहुत ही सुंदर गीतटी अच्छी आई गीतटी अच्छी लव स्टोरी चलचित्र गीतटी आप सरपुर आपको बहुत मीठा मीठा फिल हम कैसा तेरा प्यार कैसा गुस्सा है सनम बहुत ही मीठा गीतटी आई गीतटी को शुणापी मेसेज कर बड़ा बांबो सुपाई साई गाँव गाँ रु देवेन्द्र तंती राकेश तंती प्रकाश तंती आंग मैंने शुणापी चाहते यह गीतटी मुझे गीतटी को निश्चय प्ले करदेवि आपण मानी सहित आर परवर्ती मेसेज टी वर्तमान अच्छी मो पाखे जहाँ लिखी किशोर नगर कटकु बबन चंद्र पाल ममता पाल शुणापी चाहते मेघ बरसिला टुपुरु टुपुरु यह गीतटी आप प्ले करदेवि तेबे आपण माने आपणक पसंद गीत शुणीपारे हितेन्द्र दास आसाम रु लिखिंट मेसेज टी एवं जेकोसी गीत बस नाटे कहीदेपी तेरे मु तो बहुत सुंदर सुंदर गीत प्ले करुच्छी वर्तमान रेनबो एसएमएस कार्यक्रम आप सब गीत शुणु थैंक यू सो मच आप मेसेज कर थिवारो।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

श्रोताबंधु गीतटी को शुणापी मेसेज आभास सेन रोहित सेन दीपक कुमार राजकुमार भरद्वाज विमल श्रीवास्तव मनीष शर्मा राजदीप रॉय रुचिका रॉय करण सेन अमित सेन टाटा स्टील प्लांट रो आपण को पसंद रे गीत आपण को पाई

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: चासिंग को पाई अनन्य पदक्षेप और योजना अपनेछंती लोकों को सरकार। चासिंग को समृद्धि पाई समृद्ध कृषक योजना CM किसान, कृषि उद्योग और कामधेनु योजना देछि नूतन शक्ति और नूतन सुजोग।
2: समृद्ध कृषक योजना रे चासी भाई भौनी मानन को वर्धित हार रे MSP, CM किसान योजना रे आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना रे आकर्षणीय सब्सिडी, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना और मुख्यमंत्री कामधेनु योजना भली उन्नतिमूलक योजना सहित मत्स्य उत्पादन और रप्तानी रे ओडिसा उल्लेखनीय अभिवृद्धि होईछि।
1: ए सब सहित बुणाकार और कारीगर मानंकु सशक्त करुछि मुख्यमंत्री वरिष्ठ बुणाकार और कारीगर सहायता योजना, मुख्यमंत्री बयन शिल्प विकास योजना, मुख्यमंत्री रेशम विकास योजना भली लोक कल्याणकारी योजना द्वारा लक्ष लक्ष चासी परिवार हेउछन्ति उपकृत।
2: विकासर धारा ओडिसा सारा।
3: कलाकार मु कलाकार मु कलाम जीवन धन, कला बिना मु बंची पारिबिनी मुहूर्ते बा प्रतीक्षण। कला को जीवन करिथिबा, कला को नै जीवन जिउथिबा, कलार कलारे कलंकित हेउ बा न हेउ किंतु कलार कला रंगरे इंद्रधनुर प्रतिच्छवि देखुथिबा सब कलाकार, आउ कलाकार र कलात्मक गुण को हृदय दे भल पाउथिबा सब कला प्रेम को अभिवादन जणै आरंभ करुछु आजर कलाकार कार्यक्रम। आज कार्यक्रम में आपण सहित कलाकार कीर्ति आर्ति को नहीं चर्चा करने को मुझे जाइए आपण साथी बंधु जयदेव। ट्यून कर 100.4 आकाश मणि FM रेनबो कड़क दिल से।

0: वेल दोस्तों, वेलकम बैक। और मैं बहुत टाइम से बॉलीवुड सरताज के लिए ट्राई कर रही थी, फाइनली वो कॉल लग चुका है। देखते हैं हमारे साथ कौन है इस समय। हेलो।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: हाँ जी, अपना नाम बताइए दोस्त, आप
1: ऑन। मेरा नाम शैलेंद्र वर्मा है जी, मैं दिल्ली रहता हूँ।
0: शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका आकाशवाणी रेनबो पर। क्या करते हैं?
1: मैं जी मशीन एम्ब्रॉयडरी का काम करता हूँ।
0: तो बहुत हुनर का
1: और
0: काम है।
1: सारा दिन आपका रेडियो सुनता हूँ, इसीलिए उसमें मैसेज करता हूँ।
0: अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपके यहाँ से थोड़ा सा शोर आ रहा है, क्या आप उस जगह आ सकते हैं जहाँ?
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
0: हाँ जी। तो आप बने आज हमारे बॉलीवुड सत्ता सुषमा सेठ।
1: बड़ी खुशी हो रही है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरा रेडियो पे नाम आया आज।
0: अच्छा, तो आप पहली बार बॉलीवुड सत्ताज में नहीं, पहले बन चुके हैं?
1: नहीं जी, पहली बार।
0: पहली बार? कितने साल से आकाशवाणी सुन रहे हैं आप?
1: लगभग 30 साल हो गए हमको।
0: 30 साल में पहली बार? चलिए, क्या बात है। ओके, आप ऐसे एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं, ये तो हुनर का काम है। तो कैसा ये काम, आपने क्या शुरू से बचपन से सीखा है या कब सीखा?
1: पिताजी करते थे जी, फिर अपना भी सीख दिया।
0: अच्छा, तो इस काम में कितना मजा आता है आपको?
1: मजा क्या, बैठ के बस रेडियो सुनते रहो, काम करते रहो।
0: रेडियो में क्या अच्छा लगता है?
1: मैं ज्यादातर रेनबो ही सुनता हूँ।
0: ओके, रेनबो ही सुनते हैं, क्या बात है। रेनबो में क्या खास लगता है?
1: ये बॉलीवुड सरदार तो मैं कभी छोड़ता ही नहीं हूँ आपका, ये वाला प्रोग्राम तो।
0: अच्छा, ओके, क्या अच्छा लगता है इस प्रोग्राम में?
1: इस प्रोग्राम में जानकारी है और आपको बहुत आगे के लिए फ्यूचर प्लान आते हैं, बच्चों के लिए, सबके लिए, बुजुर्गों के लिए, और रेडियो डॉक्टर भी अच्छा लगता है मुझे बहुत।
0: ओके, मतलब आपको बहुत तरह के फॉर्मेट्स होते हैं, आप सभी के लिए ही होते हैं आकाशवाणी पे, हर तरह के फॉर्मेट्स होते हैं,
1: बहुत सारी जानकारी होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
0: हाँ जी,
1: रेडियो से।
0: अच्छा, एक बात बताइए, आपको आज आपने सुषमा सेठ बिल्कुल सही जवाब दिया है।
1: हाँ जी,
0: इनके बारे में क्या जानते हैं?
1: इनकी बहुत फिल्में देखी है जी, मैं हम लोग भी देखा है, इनका टीवी पे भी देखा है इनको।
0: हाँ जी बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स भी बताते हैं इनके बारे में
1: बहुत, और इनका एक तरह से दादी वाला ही लुक है।
0: वो लगती हुई दादी, उनमें वो अपनापन है, वो एहसास है ना।
1: हाँ, ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई एक्टर नहीं है, हम हमारे घर का ही मेंबर है।
0: देखो, यही तो खूबसूरती होती है, कोई अपनी एक्टिंग को इस तरह से सिल्वर स्क्रीन पर जीता है कि लगता है कि ये बस हमारा ही, हमारे बीच का ही है।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: है ना। तो आप क्या करते हैं एम्ब्रॉयडरी की अलावा, और क्या कर सकते हैं, और क्या करते हैं?
1: बस यही है मेरा, बस यही शौक, रेडियो सुनता हूँ और
0: गाने गाते हैं।
1: गाने गाता नहीं,
0: गाना आए या ना आए, गाना चाहिए।
1: गाना कुछ नहीं गाता,
0: कुछ नहीं, कविता, गाना कुछ भी
1: नहीं, गाना मेरे को नहीं आता बिल्कुल।
0: चलो कोई बात नहीं, वैसे कहते हैं क्योंकि आप म्यूजिक सुनते हैं ना, अभी आपसे बात करते करते एक बात ध्यान में आई है, जहन में आया कि एम्ब्रॉयडरी और म्यूजिक के बीच का एक बहुत ही खूबसूरत और गहरा रिश्ता होता है, पता है कैसे?
1: वो हाँ, सही कह रहे हैं आप।
0: आप बताइए कैसे?
1: क्योंकि वो एक आपको एक लगन रहती है, आप गाना सुन रहे हैं, आप काम कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, और इसमें एक और भी होता है कि जैसे म्यूजिक में सुर और ताल, म्यूजिक जो है वो सुर और ताल से बनता है ना।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: वैसे ही एम्ब्रॉयडरी में सुई और धागे की जो सिलाई होती है उसका एक रिदम फॉलो होता है, मुझे ऐसा लगता है ना कि।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: धागे की। ऐसे आपसे बात करते करते ये एहसास हुआ कि म्यूजिक में हम जज्बात के जज्बात को सुरों में पिरोते हैं, एम्ब्रॉयडरी में एहसासों को, रंगों और मतलब एक कला होती है दोनों ही, है ना।
1: हाँ जी,
0: चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं कहूँगी जो आप ये जो स्किल है आप आने वाली जनरेशन के पास भी है आपके यहाँ पर?
1: नहीं, बेटे नहीं करते, मैं करता हूँ।
0: अरे ये तो स्किल है, ये तो हमारे कहते ना कि हमारे जो कल्चर में है ये, तो इसको तो जिंदा रखना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, चलिए, ओके, टेक केयर। चलिए, अब हम उसी फिल्म का गाना सुनते हैं जिसमें नजर आई थी सुषमा सेठ जी, उनकी फिल्म का गाना सुने।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: चलिए ठीक है, मैं वो कोशिश कर रही हूँ कि वो गाना लावी क्यों हो जाए, अगर हो जाता तो ठीक है, वरना फिर दूसरा गाना प्ले कर देंगे।
1: जैसा आपको ठीक है।
0: अलगे, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, ठीक है, अपना ध्यान रखिए।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते। वेल दोस्तों, मैं कोशिश तो कर रही हूँ लगाने की कि जिसमें हमारी सुषमा सेठ जो है एक्ट्रेस है, वेटरन एक्ट्रेस, वो नजर आई थी, वो गाना लग जाए। अगर नहीं लग पाता तो कोई बात नहीं, जी हाँ, हम लगा देते हैं बॉर्डर फिल्म का गाना।

दोस्तों, ये गाना ना सिर्फ एक गाना नहीं है, बल्कि कहते नहीं है, मतलब ये हम सुन नहीं रहे हैं बिल्कुल, इस गाने को महसूस भी कर रहे हैं। और ये गाना हमें ये भी याद दिलाता है कि देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, वो मिट्टी है जिसमें हमारे सैनिक अपनी कहानी लिख जाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं कहूंगी बॉलीवुड सरताज में मैंने काफी कॉल्स किए, प्रवीण जी, प्रवीण कुमार खारगोन मध्य प्रदेश से, उन्होंने भी सही जवाब दिया। शैलेंद्र वर्मा जी दिल्ली से, बिल्कुल लास्ट में इनका कॉल लगा, पहले नहीं लग पाया था क्योंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो रहा था, लेकिन फाइनली कॉल इनसे हमारा कनेक्ट हो गया। और इसी के साथ हमें मैसेज आया है सलीम मलिक मेरठ का यूपी से, इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। इरशाद अशरफी, इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया राजस्थान से। और इसी के साथ हमने जोशी मेरठ जी को भी कॉल किया था, लेकिन इनका कॉल भी इन्होंने पिक नहीं किया, तो उन्होंने लिखा अभी, आई एम सो सॉरी कुडंट अटेंड द कॉल एज आई वाज अटेंडिंग द ये कुछ इनकी हाँ कोई प्रॉब्लम हो गई थी, इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम, तो उसको वो अटेंड कर रहे थे। कान से मोहम्मद फुरकान जी, और इन्होंने कहा है कि आपका सॉन्ग सिलेक्शन बहुत ही लाजवाब है, थैंक यू सो मच। सलीम मलिक मेरठ यूपी से बिल्कुल सही जवाब लिखते हैं। और इसी के साथ पंकज अमरावती महाराष्ट्र से लिखते हैं, 11:05 से कार्यक्रम प्रसारण नहीं हो रहा है न्यूज ऐप पे, और इसी के साथ राम राम जी, हेलो एंड नमस्ते इंडिया, जैसे सुर का है सास से रिश्ता, अरे वाह, जैसे सुर का है सास से रिश्ता, आगरा का है ताज से रिश्ता, हमारा है आपसे रिश्ता। इसी रिश्ते को बनाए रखने के लिए एक बार फिर से प्रियंका वर्मा आपके साथ। दुखों से भरी दुनिया में कोई दिल से मुस्कुराना हो तो प्रियंका से मिले, किसी को कोई तकलीफ हो तो प्रियंका को सुने, कभी कोई सीख अगर आपको रास्ते में ना आए नजर तो प्रियंका से मिले, क्योंकि ये खान है सुखों की, सबके दिलों में बिना वजह दुखों की दवा, ये हम

दर्द है, एक बार इन्हें जरूर सुने, इन्हें माने, इन्हें जाने, यकीन माने, पछताएंगे नहीं। जय भारत, रोहित खेरा, दिल्ली। ओ माय गॉड, इतना इतना आपने मुझे मान दिया है, थैंक यू सो मच रोहित जी। सीरियसली, आप इस समय का मुझे देख पाते तो मेरी तो आंखों में आंसू है कि इतना अच्छा आपने लिखा है मेरे लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप भी खुश रहिए और इसी तरह आकाशवाणी रेनबो के साथ जुड़े रहिए। और इसी के साथ हमें मैसेज आया है, हितेंद्र दास आसाम से लिखते, वेरी नाइस प्रोग्राम। इसी के साथ मुझे यानी प्रियंका को दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।

0: की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: लोकों का सरकारों करो 2 वर्ष पूर्ति उपलक्षे ओडिशा लिखिची नुआ संभावना नुआ सफलता
2: समृद्ध ओडिशा रो स्वप्न को साकार करिवा दिगरे आगो को बढुची आमो राज्य
1: डिजिटल ओडिशा गठन दिगरे ई गवर्नेंस सेवा रो तृणमूल विस्तार समेत सुपरिचालित विद्युत व्यवस्था एहा हेउची नुआ ओडिशा रो परिचय
2: सुस्थ ओडिशा पई आयुष्मान भारत गोपबंधु जन आरोग्य योजना माध्यम रे कोटी कोटी लोक पाउछंती कैशलेस चिकित्सा सुविधा
1: सुभद्रा लक्ष्यपति दीदी एवं स्वयं सहायक गोष्ठी आज ओडिशा रे प्रत्येक महिला सशक्त
2: बास गृह पानीय जल रोजगार दक्षता पर्यटन और शिल्प विकास माध्यम रे गढ़ी उठुची आत्मविश्वासी ओडिशा स्वच्छ पारदर्शी और जनमुखी शासन सह आगो को बढ़ुची प्रतिटी ओडिया
1: विकास रा धारा ओडिशा सारा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। अपने पैतृक गांव में राष्ट्रपति ने 68वां जन्मदिन भी मनाया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी पहाड़पुर गांव पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा किया। वे पवित्र संथाली जहेरा और होजहेरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य, समाज सुधार के माध्यम से देश के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला राज्य है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित कर रहा है। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारियां पुख्ता हैं। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। श्री मुखोपाध्याय ने सूचना प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न मीडिया इकाइयों में सेवाएं प्रदान की और आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में भी कार्य किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। विश्वभर में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

सुन सुन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक अमे कार्यक्रम चली आज चर्चा रे आज चर्चा विषय वस्तु छि नुआ स्कूल नुआ श्रेणी नुआ अनुभूति कोन रो इच्छा आपन करो हम सहित शेयर करंतु आपन कर मत एसएमएस माध्यम रे हम नंबर हला 09495963210 हम व्हाट्सएप नंबर रे हला 8895254200पहुंचीगलानी मेसेज देखिबा परवर्ती मेसेज टी दैचंती जय श्री राधे जय देव भाई गुड आफ्टरनून मु जेतबेले आमो गा एमी स्कूल रु सप्तम पास करे आठगड़ बीएन विद्यापीठ रे अष्टम क्लास रे नाम लेखा हला टिके भय लागिला टाउन पिलांक सह मिसिबा समय लागिला जेहेतु मु गां रु जाईथिली परे सब ठीक होइगला टीचर को देखी भय भी लागुथिला किंतु परवर्ती समय रे समस्त सहित आमे मिलेमिसी पाठ पढ़ीथिलु ए सुंदर मेसेज दैथिनि संतोष कंतोलो आठगढ़ रु बहुत बहुत धन्यवाद आपनकर ए सुंदर मेसेज टी पाई

44,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके

0: जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंबमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
1: उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदायों के लोगों के बातचीत के जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के दिशा में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडाबेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: प्रगति परिदा जी, ओडिशा के मंत्री गणेश जी खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण मांझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना की 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा, सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा

0: को संबोधित किया।
1: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हूँ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने

0: कॉरिडोर बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
1: इसके बाद गृह मंत्री इचल करंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा, दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
2: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
3: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें और इस बार के योगा के ऊपर ये डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते हैं और ये प्रूव हो चुका है।
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2,500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
4: स्लोवाक रिपब्लिक

0: में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाईब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
2: लोग दिन भर चेयर पे बैठ के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: कार्यक्रम लिखरी प्रचार कलु आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र आकाशवाणी कटक आम परवर्त कार्यक्रम आंचलिक संवाद शुणीपर विज्ञापन पर
4: बन्या हेउ बा महाबात्या सबु परिस्थिति रे
5: गारु सहर जाए सबु स्थान रे
4: आबाल वृद्ध बनिता समस्तंक पाई
5: जुआंग ओ सांतालंक ठारु बंडा एवं कोयांक जाए सबुरी भाषा रे
4: केवल आकाशवाणी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने

0: 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दिल से दिल तक आपण मन अच्छा जयदीप साथ चलत सुनवा कत मिठा मिठा ओडिया कथचित्र गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के

0: OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: खरा दिने अंशुघात प्रति सतर्क रुहंतु।
2: अंशुघातर लक्षण गुड़िक हेउछि प्रबल झाळ बोहिबा, मुंड बुलाई अंधार दिसिबा ओ बांति लागिबा, प्रबल शोष लागिबा, मांसपेशी टाणी हेबा, अचेत हेबा किंबा बात मारिबा।
1: अंशुघात निमन्ते पूर्व सतर्कता गुड़िक हेउछि सकाळी किंबा उपर बेला खरा कम थिबा बेले बाहर को जांतु। बाहर को जिबा पूर्वरु जथेष्ट पानी पियंतु। हालुका रंगर ढिला पोशाक, छत्ता ओ जोता व्यवहार करंतु। खरारे कठिन परिश्रम करंतु नाही, अधिक दूर चालंतु नाही, मछिरे मछिरे छाईरे विश्राम नियंतु।
2: अंशुघातर प्रतिकार गुड़िक हेउछि रोगी को खोला ओ ठंडा जगह को नी ORS किंबा चीनी लुण सर्बत अथवा साधा पानी पियंतु। पोशाक गुड़िक जथा संभव खोली दियंतु, मुंड को धोई दियंतु एवं ओदा कपड़े पोछंतु। रोगी को पंखा, कूलर किंबा AC पवन रे सुवाई दियंतु। अवस्थारे उन्नति न हेले स्वास्थ्य कर्मचारी को जणंतु किंबा एम्बुलेंस डाकंतु।
1: वयस्क तथा असुस्थ व्यक्ति एवं गर्भवती महिला को पाई अंशुघातर आशंका अधिक रही थाए।
2: स्वास्थ्य ओ परिवार कल्याण विभाग ओडिशा।
3: हिमावृत उत्तुंग पर्वतमाला, विस्तीर्ण उर्वर समतल भूमि, उच्च मालभूमि, दिगंत विस्तारी शुष्क मरुभूमि, निविड़ वनराजि, मनोहर ह्रद, गभीर सागर और महासागर, उर्वर उपकूल, सुविस्तृत नदी अवबाहिका, ए सबुकु नै गड़ा आम माटी मा भारत। ए माटीर इतिहास जेतिकी चर्चित, एहार भूगोल सेतिकी सुशोभित, एहार ऐतिह्य जेतिकी परिपूर्ण, एहार कला साहित्य संस्कृति सेतिकी स्वर्णमय। ज्ञानगरी माने माटी जेतिकी विख्यात सेतिकी प्रसिद्ध, एहार वीरत्व, साम्राज्य आउ आभिजात्य। तेणु ए माटीर कथा, ए माटीर वीरंक गाथा को नै आरंभ करछु आजर कार्यक्रम मो देश।

5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति हो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला।

परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार

सोने की चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हां,

हर बार हिंदुस्तानियों ने वापस जाते हुए दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि हमारी मिट्टी ने हमें सिखाया है, यदि नफरत करने वाले नफरत का दामन नहीं छोड़ते तो मोहब्बत करने वाले

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से

हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।

0: होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूं कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा है,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। आज हम द ग्रेट माइग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। आप शायद कुछ पक्षी या पंछी के बारे में सोच रहे होंगे। जी नहीं दोस्तों, मैं तो इंसानों की बात कर रहा हूं। सीमाओं के पार प्रतिदिन आने जाने वाले लोग के प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। हालांकि कुछ श्रेणियों के लिए यानी शरणार्थी, आर्थिक प्रवासी के लिए गतिशीलता को और अधिक कठिन बनाया जा रहा है। वैश्विक प्रवास के नए पैटर्न क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन वैश्वीकरण से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। एक और वैश्वीकरण की प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय प्रवास को बढ़ावा देती है, जिसमें विकास, जनसंख्या और लोकतंत्र के इम्बैलेंसेस शामिल है। वैश्विक नौकरियों का संकट, वैश्विक श्रम बाजारों का विभाजन, संचार और परिवहन में क्रांतियां और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक नेटवर्क। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन स्वयं वैश्वीकरण की प्रक्रिया को जन्म देता है, जिसमें धन और वस्तु का वैश्विक स्थानांतरण, वैश्विक शहरों का उदय तथा बढ़ती सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता शामिल है। हालांकि व्यापार और पूंजी की तुलना में श्रम की वैश्विक आवाजाही प्रतिबंधित बिना हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन उन मुद्दों के मूल में है जो इनके लिए जरूरी है, जिसमें राष्ट्रीय पहचान, आर्थिक प्रतिस्पर्धता और सुरक्षा शामिल है। इसीलिए विरोधाभास ये है कि जबकि अधिकांश औद्योगिक देशों के श्रम बाजार की कमी को पूरा करने और जनसंख्या

के रुझाने को संबोधित करने के लिए अधिक प्रवासियों की आवश्यकता होती है। फिर भी अधिकांश राजनीतिक और लोक लुभावन दबावों के जवाब में प्रवासन को प्रतिबंधित कर रहे हैं। हालांकि व्यापार और पूंजी की तुलना में श्रम की वैश्विक आवाजाही प्रतिबंधित बनी हुई है। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन को वैश्वीकरण की कोयला खदान में एक कैनरी बर्ड माना जा सकता है, या तो ये तब फलेगा फूलेगा जब वैश्वीकरण की ताकतें राष्ट्रवाद पर काबू पा लेंगी, या इसकी कमी इस बात का संकेत हो सकता है कि वैश्वीकरण चरम पर पहुंच चुकी है और पीछे हट रहा है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार 2015 में 244 मिलियन लोग एक वर्ष से अधिक समय तक अपने देश से बाहर रहे, और निश्चित रूप से वे लोग जो अपने देश के अंदर ही बाहर जाते हैं। इस कुल में लगभग 20 मिलियन शरणार्थी शामिल हैं। एक तरफ अपने देश में मजबूर लोगों की ऐतिहासिक उच्च संख्या, दूसरी तरफ प्रवास की कुल संख्या का अभी भी अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा। प्रवास और उसके प्रभाव के बारे में अब जानेंगे मेरे दोस्तों आज के लम्हे कार्यक्रम में चेतन के साथ। दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla। प्रवासन एक ऐसा तरीका है जिसमें लोग रहने और काम करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। नौकरी, आश्रय या किसी अन्य कारण से लोगों का अपने घर से दूसरे शहर, राज्य या देश में जाना प्रवास कहलाता है। भारत में पिछले कुछ वर्ष में ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर प्रवास बढ़ा है। प्रवास के कारण आजकल कई लोग बेहतर जीवन जीने लगे हैं। रोजगार के अवसर सबसे आम कारण है जिसके कारण लोग पलायन करते हैं। इसके अलावा अवसरों की कमी, बेहतर शिक्षा, बांधों का निर्माण, वैश्वीकरण, प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ या सूखा, फैमिन और ड्रॉट, और कभी कभी फसल की विफलता ने ग्रामीणों को शहर की ओर माइग्रेट करने के लिए मजबूर किया। जो लोग काम या आश्रय की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उन्हें प्रवासी कहा जाता है। ज्यादातर बार प्रवासी लोग कुशल या शिक्षित नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें आमतौर पर मजदूर यानी श्रमिक, जिन्हें उनकी सेवाओं के लिए प्रत्येक दिन के अंत में भुगतान किया जाता है। ऐसे मजदूरों को अपने परिवार के जीवन यापन के लिए पर्याप्त पैसा नहीं मिलता है और वे कई समस्याओं से पीड़ित होते हैं, जैसे कि उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन, स्वच्छता, रहने के लिए उचित स्थान आदि नहीं है। शहरी जीवन के लिए प्रवास एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बनता है। बड़े शहरों के कई अवसर और आकर्षण बड़ी संख्या में लोगों को बड़े शहरों की ओर खींचते हैं। प्रवास का प्रवासियों के जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव हो सकता है। बेरोजगारी कम होती है और लोगों को बेहतर रोजगार के अवसर मिलते हैं। प्रवासन लोगों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में मदद करता है। इसे लोगों के सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है, क्योंकि वे नई संस्कृति, रीति रिवाज और भाषाओं के बारे में सीखते हैं, जो लोगों के बीच भाईचारा को बेहतर बनाने में मदद करता है। कुशल श्रमिकों के प्रवास से क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि में वृद्धि होती है। बच्चों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे। जनसंख्या घनत्व कम हो जाता है और जनदर घट जाती है। दोस्तों, ये थे सकारात्मक प्रभाव। अब कुछ नकारात्मक प्रभाव को भी देखेंगे हम आज के लम्हे प्रोग्राम में। ग्रामीण क्षेत्रों से एक व्यक्ति की हानि, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादन और विकास के स्तर पर प्रभाव। शहरी क्षेत्र में श्रमिकों के आने से नौकरी, मकान, स्कूल सुविधाएं आदि के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। बड़ी जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों, सुविधाओं और सेवाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। शहरी इलाकों में ग्रामीण के लिए
जीवन रहना मुश्किल है, क्योंकि शहरी इलाकों में प्राकृतिक वातावरण और शुद्ध हवा नहीं है। इन्हें हर चीज

के लिए भुगतान करना पड़ता है। प्रवासन से किसी स्थान की जनसंख्या में परिवर्तन होता है, इसीलिए भारत में जनसंख्या का वितरण असामान्य है। कई प्रवासी पूरी तरह से निरक्षर और अशिक्षित हैं, इसीलिए वे न केवल अधिकांश नौकरियों के लिए अयोग्य है बल्कि उनमें बुनियादी ज्ञान और जीवन कौशल का भी अभाव है। गरीबी के कारण वे सामान्य और स्वस्थ जीवन जीने में असमर्थ हैं। गरीबी में पले बड़े बच्चे को उचित पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंच नहीं होती। प्रवास के कारण शहरों में झुग्गी झोपड़ियां बढ़ गई है, जिससे अस्वच्छता, प्रदूषण आदि जैसे अनेक समस्याएं बढ़ गई है। कभी कभी प्रवासियों का शोषण किया जाता है। प्रवासन एकल परिवार की वृद्धि का एक मुख्य कारण है, जहां बच्चे व्यापक पारिवारिक दायरे के बिना बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये था माइग्रेशन के बारे में आज के लंबे प्रोग्राम में। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक आप अपने होस्ट दोस्त और आरजे चेतन को इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

ट्यून करिसेंति 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक स्टोरी घरे समय 5:08 12 सेकंड सुधी पाछे आपनको पाखरे आओ नंबर 0671230315 कौन कथा बा निज बेसरे कथा बा ऑब्वियसली आपनकर बहुत हैबिट थिवो मोर बहुत हैबिट अछि समस्तंकर किछ ना किछ हैबिट अछि तबे सेई सब हैबिट भितरु हमर निजर पर्सनल फेवरेट भी गोटे गोटे हैबिट थाय गोटे नहीं आज गोटे हैबिट विषय कथा ओके तो निज हैबिट भितर आपणकर फेवरेट हैबिट कोटा आपणकर सही हैबिट टा जणे परिबे 0671230315 3 रे एया जे आपणकर सब हैबिट भितर आपणकर फेवरेट हैबिट कोटा

0: हेलो।
1: हेलो मैम, नमस्कार। जय जगन्नाथ।
0: जय जगन्नाथ। की कहते कौन कहते?
1: मैं हूँ प्रफुल्ल प्रधान कहती कुआरपाड़ माणियामंदल।
0: आज्ञा। आपण सब पसंद हैबिट कौन?
1: ना ना हैबिट कह पिला बेले पहरवा मोर बहुत हैबिट।
0: अच्छा अच्छा।
1: आठ दस जन लगे जो पहरी जा खेल लुच काली मु अधिका समय बुड़ी जीवी हेरी बहुत बाट बोले पोखरी एकर सेकर प्राय कह तीन भागे मुझे बुड़ी की जीवी तोड़ी खेल समुद्री जाए बाहर नई समुदे थे चारिकर मुझे बुड़ी रही समुद्र पाखक आस धरी पक मोर बे हाबिट आती पहरा गोटे गामुछा बांधिक उपर कर तीतीय पहुंच दब एटा पोखरी एकर सेकर भी आमर हो गोटे बड़ पोखरी अच्छे बालुगुड़िया पोखरी एकर सेकर सदा हम आरा दिन तक आम पोखरी दिन कटे आ
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
1: आ गोटे चार्ज खेल मैम, चार्ज खेल है नौ टू बस दिन चारिटा पांचटा जाए बैठ रण सब कई कई कुआ जबार ना तो बस सब।

0: ट्यून करिसेंदे 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक नंबर 0671-230-3153 रे कॉल करि परबे शेयर करि परबे आपनों का हैबिट भीतर फेवरेट हैबिट कोटा हेलो
1: हां दीदी नमस्कार जय जगन्नाथ
0: जय जगन्नाथ के कोथले कोडू कोथले
1: मो संतोष बेहरा कंट्रोल आठगड़
0: आज्ञा कोन तो आपनों को फेवरेट हैबिट बिषय रे
1: हां मोर फेवरेट हैबिट होची राति 4टा रे उठिया प्रतिदिन उठी सारी नित्य कर्म सारी घरणी को पाई फूल तो तोड़ी दिए ये ठाकुर पूजा करते मॉर्निंग वॉक जाए मॉर्निंग वॉक को आसला मोर गोटे सब भल ये अच्छे महामंत्र 108 थर गोटे डायरी लिखे प्रतिदिन
0: लिखे
1: रेडियो शुणे अनुचिंता कटक रेनबो आटा प्रति नित्यदिन कम
0: ओके ओके बहुत सुंदर बहुत सुंदर थैंक यू सो मच कॉल कर
1: जय जगन्नाथ
0: दीदी जय जगन्नाथ नंबर 0671-230-3153 शेयर कर हैबिट कोटा हेलो
2: हेलो दीदी नमस्कार
0: नमस्कार गुड इवनिंग ये कोथले कोडु कोथले
2: मु साई कोउची बेलपडारु
0: ओके फेवरेट हैबिट कोण
2: मोर तो फेवरेट हैबिट हो जी माने जाकु जो माने कोई थी भी गोटे करिए उ गोटे काम आ मु जेम जो मन पके करबी आ मते जदि के कहि दिबो 10टा रे आसी आ मु पूरा 10टा बाजे 5 मिनट दिबो जाई सेट पहुंच जाई थी आ मते लेट रे जो पसंद न काई ना लेट रे जाउ थी जने गाली करथुओ एबडा सब मते पसंद न
0: पक्का टाइम मैनेजमेंट आ
2: आज्ञा पूरा घर जदि जल्दी बाहर कि थी बस सेठी पूरा टाइम पुरपुर पहुंच जाए दो कई आ कोई बगु न थु
0: बहुत बढ़िया थैंक यू कॉल करथि बारो
2: धन्यवाद दीदी रोहिली नमस्कार
0: नमस्कार नंबर 0671-230-3153 आपण भी कॉल करि परबे शेयर करि परबे आपण को फेवरेट हैबिट बिषय रे

0: अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
2: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
1: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल DD न्यूज। केवल खबर, पूरी खबर।
0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

भगवान शंकर के श्रीमुख से श्री रामचंद्र के ब्रह्म, चिन्मय तथा अविनाशी होने का ज्ञान पाकर पार्वती का संशय मिट गया था। फिर भी उन्होंने ये जानने की जिज्ञासा प्रकट की थी कि प्रभु ने मनुष्य का शरीर किस कारण धारण किया। भगवान शिव ने तब उन्हें वो सभी तथ्य बताए जो अवतार के हेतु कहे जा सकते हैं। इनमें से एक प्रभु द्वारा नारद मुनि के मोहभंग की कथा है। दूसरी कथा है आदि पुरुष मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा को मिले वरदान की। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव हुए। मनु के छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराणों में मिलती है। देवहूति मनु की कन्या थी, जिनका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ और जिन्होंने दीनों पर दया करने वाले समर्थ तथा कृपालु आदिदेव भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया।

सम्मेलनम् आयोजयति। अस्य सम्मेलनस्य अध्यक्षः राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शकः अजीत डोभालः भविष्यति। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन श्वः पर्यन्तम् उपहिमालयीय पश्चिम बंगस्य सिक्किम राज्यस्य च पृथक् पृथक् स्थानेषु अत्यधिक वृष्ट्यै रक्तवर्णीया पूर्वसंचेतना प्रदत्तास्ति। ऋतु विभागेन दिने केरल माहे तमिलनाडु पुदुच्चेरी करैक्कल प्रदेशेषु पूर्वोत्तर भागेषु च प्रचण्ड वृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम् अस्ति। हरियाणा चण्डीगढ़ पंजाब दिल्ली उत्तराखंड पूर्वी मध्य प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेशेषु च विद्युद्योतनेन सह मेघगर्जनस्य संभावना ऋतु विभागेन प्रकटिता। बिहार आंध्र प्रदेश उत्तरांतरिक कर्नाटक तेलंगाना विदर्भ अंडमान निकोबार द्वीपेषु च आगामी दिनद्वयोः एतादृशी स्थितिः भविष्यति। ब्राजील देशः अद्य फिलाडेल्फिया क्रीडांगणे हैति देशस्य उपरि 3-0 इत्यंकैः सहजतया विजयं प्राप्य फीफा विश्वकप क्रीडायां स्वस्य प्रथमं विजयम् अभिलिखितम् इति वार्ताः।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
2: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
1: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल DD न्यूज। केवल खबर, पूरी खबर।
0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे।
1: नमस्कार, वर्तमान मुख्य संवाद सह मु सत्य रंजन महापात्र। रायरंगपुर ठारे 47,000 ऊर्ध कोटि टंकर विभिन्न प्रकल्पर उद्घाटन शिलान्यास कले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। विश्वरे अस्थिरता सत्वे भारत निरंतर भावे शांतिर वार्ता देउछि कहिले राष्ट्रपति। ओडिशार अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हेले भारत बलिष्ठ हेबो मतव्यक्त कले प्रधानमंत्री। पश्चिमबंगर हुगुळीरु पीएम किसान योजनार 23तम किस्ती प्रदान कले प्रधानमंत्री मोदी। वार्धक्यरे सुस्थता पाई जोगर वार्ता नहीं आसंताकाली पालन करा अंतर्जातीय योग दिवस। प्रधानमंत्री मोदी आसंताकाली कोलकातार तीनोटी स्वदेशी निर्मित भारतीय नौसेना जहाजर लोकार्पण करिवे। आसंताकाली हेबो एनटीए द्वारा परिचालित नीट यूजी पुनः परीक्षा। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 पाई प्रथम तीर्थयात्री दल आज नाथुला पास दे चीन प्रवेश करछन्ति। फिफा वर्ल्ड कप रे आज तुर्की पारागुए स्कॉटलैंड मोरक्को और नेदरलैंड स्वीडन मध्ये मैच खेला जिवो। एवं मौसुमी वायु प्रभाव रे राज्य विभिन्न स्थान रे वर्षा हेबा नै पाणीपाग केन्द्र रो सतर्क सूचना जारी। वर्तमान पई मुख्य संवाद इठारे समाप्त करछु, परवर्ती मुख्य संवाद सुनि परिबे राती 8:00 रे।

0: परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री कहते सरकार आदिवासी समाज उत्थान पर आदिवासी युवक शिक्षा ओ निजुक्तर सुजोग प्रदान करुछंती। श्री मोदी पहाड़पुर ग्राम को सूर्य ग्राम भाव विकसित करने को घोषणा करिछंती। आसंताकाली आंतर्जातिक योग दिवस अवसर में समग्र देश एवं विश्व को योग दिवस में सामिल होने को प्रधानमंत्री आह्वान देइछंती। इस अवसर में श्री मोदी राष्ट्रपति को जन्मदिन शुभेच्छा जणाइथिले।
0: मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं उनके दीर्घायु होने और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। जगन्नाथ जी भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं। उड़ीसा की बेटी आज देश के इतने बड़े पद पर पहुंची है, हमारा मार्गदर्शन कर रही है, ये हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है।
1: समावेश में राज्यपाल डॉ हरिबाबू कंभम पाटी एवं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जोग देथिले। स्वराष्ट्र समवाय

0: का मार्गदर्शन कर रही है, ये हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है।
1: समावेश में राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभम पाटी एवं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जोग देथिले। स्वराष्ट्र समवाय मंत्री अमित शाह कहते गुरुत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिह्य स्थलीगुड़िकर विकाश और संरक्षण पर देशव्यापी अनेक पदक्षेप ग्रहण कर कोल्हापुर आज 1445 कोटी अधिक मूल्य श्री अंबाबाई मंदिर विकास प्रकल्प उद्घाटन करने अवसर में श्री शाह से कहते विकास प्रकल्प श्री अंबाबाई मंदिर परिसर को एक आधुनिक तीर्थस्थल में परिणत कर ऐतिहासिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ऐतिह्य संरक्षण हो पार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्व में गत 12 वर्ष मध्य देश में विकास सांस्कृतिक पुनरुद्धार जातीय सुरक्षा और विश्वस्तरीय स्वीकृति क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हासिल हो आंतर्जातिक योग दिवस 2026 आसंताकाली पालन करा वार्धक्यरे सुस्थता पाई योग प्रसंग आधार रे ए द्वादश आंतर्जातिक योग दिवस पालन करा जिवो विभिन्न वर्गर लोकों पाई योगर आवश्यकता उपरे ए प्रसंग गुरुत्व प्रदान करुछि। कोलकाता ऐतिहासिक रेड रोड ठारे मुख्य जातीय समारोह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्व में अनुष्ठित हो समारोह सकाळ 5:00 आरंभ हेबा नै कार्यसूची स्थिर होईछि। कार्यक्रम में देश तथा विदेश बहु नागरिक आभासी माध्यम से जोगदेवार संभावना रही। योग दिवस पालन अंशस्वरूप संस्कृति मंत्रालय पक्ष देशव्यापी 100 प्रतीकात्मक स्थान में स्वतंत्र योग दिवस आयोजन कर देशर समृद्ध सांस्कृतिक ऐतिह्य ऐतिहासिक स्थान और योग परंपरा को यह संजोग कर नूआदिल्लीर लालकिला उत्तराखंडर हरिद्वार ओडिशार कोणार्क कर्णाटकर हम्पी तमिलनाडुर महाबलीपुरम महाराष्ट्र मुंबई बिहार नालंदा गुजरातर अहमदाबाद उत्तर प्रदेश सारनाथ लद्दाखर लेह तेलंगाना हैदराबाद और आसामर सिलचर समेत 12 प्रमुख स्थान में यह समारोह आयोजन नहीं पदक्षेप ग्रहण कर विदेश 210 अधिक भारतीय मिशन विश्वव्यापी 2500 स्थान में योग कार्यक्रम आयोजन करतीत दिल्ली तथा देशर विभिन्न प्रांत सार्वजनिक स्थानगुड़िक योग उत्सव आयोजन नीट यूजी पुनः परीक्षा आसंताकाली अनुष्ठित हेबो। जातीय परीक्षण संस्था देथिबा सूचना अनुसार परीक्षा अपराह्न 2:15 पर्यंत अनुष्ठित हेबो। देशर 551 शहर एवं विदेशर 14 शहर में परीक्षा केन्द्र स्थापन कर 22,79,000 अधिक छात्रछात्री आसंताकाली परीक्षा देबे। परीक्षार सुपरिचालना लक्ष्य नहीं आज देशव्यापी मॉक ड्रिल अनुष्ठित होइजाइछि। मनीष व्यवहार योग्य 16 निर्धारित डोज मिश्रण एफडीसी औषधर उत्पादन विक्रय और बंटन को केन्द्र सरकार निषिद्ध घोषणा करिछन्ति। सुप्रीमकोर्ट निर्देश आधार में औषध वैषयिक परामर्श बोर्ड द्वारा गठित एक विशेषज्ञ कमिटी निष्पत्ति द्वारा यह पदक्षेप ग्रहण कर औषध मिश्रण चिकित्सागत यथार्थता नथिबा एवं स्वास्थ्य पर यह विपज्जनक जमापड़ा पर सरकार यह निष्पत्ति ग्रहण कर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय देखा सूचना अनुसार देश में निरापद प्रभावशाली और वैज्ञानिक भाव में वैध औषध उपलब्धता को सुनिश्चित करने लक्ष्य सरकार यह पदक्षेप ग्रहण कर राज्य औषध नियामक एवं प्रवर्तनकारी संस्थागुड़ी ए निष्पत्ति को कड़ाकड़ी भाव पालन करने को सरकार निर्देश देते। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 प्रथम ब्याच्र श्रद्धालु आज नाथुला पास अतिक्रम कर चीन मध्य प्रवेश कर सिक्किम राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर पर्यटन मंत्री सेरिंग थेन्दुप भूतिया उपस्थित पताका देखा श्रद्धा शुभारंभ कर प्रथम पर्यायर दुईज जनसंपर्क अधिकारी जन डाक्तर चारिज सहकारी कर्मी समेत मोट 47 जन चीन मानसरोवर अभिमुखे अग्रसर होने आज सुधा ग्यांगेज पहुंचे से आसंता 27 तारीख दिन मानसरोवर परिक्रमा पर आसंतास प्रत्यावर्तन कर ग्यांगटक पहुंचे। राजस्व विभाग प्रशासन एक गुरुत्वपूर्ण अंग एवं गरीब साधारण नागरिकों सरकारी योजनार सुफल तथा सेवा प्रदान करिबारे यहा प्रमुख भूमिका निर्वाह करिथाय बोली बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री के राममोहन नायडू कहिछन्ति। श्रीकाकुलम ठारे राजस्व दिवस समारोह को आज संबोधन करी मंत्री श्री नायडू राजस्व कर्मचारी भू प्रशासन विपर्य परिचालना एवं साधारण सेवा प्रदान में उल्लेखनीय कार्य करुछन्ति। जमी विवाद समाधान करने क्षेत्र में सकारात्मक आभिमुख्य ग्रहण करने को राजस्व अधिकारी मंत्री श्री नायडू परामर्श देइछन्ति। बोलिभिया जरूरीकालीन परिस्थिति जारी होई छि। देशव्यापी वृद्धि पाउथिबा आर्थिक आवश्यकता परिप्रेक्षीरे सप्ताहव्यापी चलिथिबा सरकारी विरोधी प्रतिवाद को दृष्टि रखी राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज ए घोषणा करिछन्ति। देशवासी को संबोधन करी राष्ट्रपति पाज बंद होइथिबा सड़क पथगुड़ी पुनः चालू करिबा एवं देशरे स्वाभाविकता फेराइ आणिबा पई निर्देश देइछन्ति। चेन्नईर एमए चिदंबरम स्टेडियम ठारे भारत आफगानिस्तान मध्यरे चलित सीरीज तृतीय तथा शेष पुरुष

ट्यून करी शंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से ही दिल तक संध्या असर रे मेसेज करी शंती आभास सेन रोहित सेन दीपक कुमार राजकुमार भरद्वाज विमल श्रीवास्तव मनीष शर्मा टाटा स्टील प्लांट रु लिखुशंती सुदीपा गुड इवनिंग नमस्कार आपण को मध्य नमस्कार टाटा स्टील परिवार तरफ ओडिशावासी को प्यार भरा नमस्कार लिखुचंत अपा आज आम माँ को 70वां हैप्पी बर्थडे से बहुत बहुत शुभकामना जनदे निश्चित भाव आपण माँ को आम समस्त तरफ हैप्पी बर्थडे देन लिखुचंत सबर इतना रखो कि हर दर्द हार जाए हौसला इतना रखो कि हर तूफान गुजर जाए वक्त बदलने में देर जरूर लगती है मगर यकीन इतना रखो कि तकदीर सवर जाए बहुत सुंदर शायरी लिखुचंती रज छुट्टी काटिके आसीगले प्लांट रचंती सबु आरजी को वेरी गुड इवनिंग जनईछंती टुना भाई रमेश भाई उर्मिलापा मुन्ना भाई विजय भाई चांद भाई को वेरी वेरी गुड इवनिंग जनईछंती थैंक यू सो मच आपण को मध्ये वेरी गुड इवनिंग आपण माने मध्ये पठी परिवे आपणक नियर एनिमल्स को पाखु को आपणक र गुड विशेस यस हम माध्यम रे पठी परिवे मोबाइल फोन रो मेसेज बॉक्स को जिबे कैपिटल लेटर रे लिखिबे FMRC स्पेस देबे ना एड्रेस सहित जहां को पई विश एवं जहां विश लिखि के पठी देबे 0949596321 को किंबा व्हाट्सएप करि परिवे 8895254200 नंबर को

ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल जाए संध्या आसन परवर्ती मेसेज कर अरविंद साहू बैंगलोर रु से लिखुंट गुड इवनिंग मुज विलेज नराज कटक कथा बहुत मन पकाउ बहुत बहुत धन्यवाद आपन को वेरी गुड इवनिंग एवं आपण गांव को मन पकाउ गांव लोक भी निश्चित भाव आप मन पकाउ तेज ब्यूटीफुल गीता

0: 6 मीटर तथा 972 किलो हर्ट्ज चुके।
1: राति 8 मुख्य संवाद सह मु आशुतोष पति। पीएम किसान योजनार 23तम किस्ति अर्थ प्रदान कले प्रधानमंत्री। 9,44,00,000 अधिक चाषी को मिलला 18,880 कोटि टंकार अर्थराशि। मयूरभंज जिलार रायरंगपुर 47,000 कोटि अधिक टंकार विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास कले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। वार्धक्य सुस्थता पाई योग प्रसंग आधार में आसंताकाली अनुष्ठित हेबो आंतर्जातिक योग दिवस। नीट यूजी पुनः परीक्षा आसंताकाली अनुष्ठित हेबो। परीक्षा देबे 22,79,000 अधिक छात्र छात्री। कैलास मानसरोवर यात्रा 2026 पाई प्रथम तीर्थयात्री दल आज नाथुला पास दे चीन प्रवेश करिछन्ति। चेन्नई दिनिकिया एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत आफगानिस्तान को 9 विकेट रे परास्त करिछि। 218 रन रो विजय लक्ष्य को भारत 28 ओवर 4 बॉल खेली 1 विकेट विनिमय रे हासिल करिनैथिला। फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता रो आज मैच रे ब्राजिल हाइती को 3-0 गोल रे परास्त करिछि। ग्रुप डी रो अन्य एक मैच रे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को 2-0 गोल रे परास्त करिथिला। फिफा वर्ल्ड कप रे आज तुर्की पारागुए स्कॉटलैंड मोरक्को और नेदरलैंड्स स्वीडन मध्यरे मैच खेलाजिबो। एवं मौसुमी वायु प्रभाव रे राज्यर विभिन्न स्थान रे वर्षा हेबा नै पाणीपाक केन्द्र रो सतर्क सूचना जारी। मुख्य संवाद बर्तमान पेतिकी परवर्ती मुख्य संवाद राति 11:05 रे।

ट्यून करिछंति 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक स्टूडियो समय राति 8:06 सचाश सेकेंड सुधी पाछे आपण गीतर मित्र किसी एमती गीत शुणा जो गीत सिंगर पाई नेशनल अवार्ड यस श्रेया घोषाल विषय आसटे कथा कौ गीत पाई नेशनल अवार्ड से सब गीत शुणा निश्चित भाव में कि श्रेया घोषाल वॉयस ब्यूटीफुल गीत एंजॉय करूँ

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारम्भ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
3: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं। और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है, आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
0: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1,500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
3: लोग दिन भर चेयर पे बैठ के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
4: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में

0: उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं था चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
2: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
1: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
3: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत हैं, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
1: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध और चेन्नई

तक दिल से ही दिल तक श्रीघर समारती 9:19 2 सेकेंड सुधी पाछे आपनको पाखरे अभिला स्मृति रे सजना साथ निभाना रो गोटे ब्यूटीफुल गीत आसुची आपनको पाखको सुरेश वाटकर एवं आशा भोसलेको वॉइस रे माया गोविंद लेखिछंती गीतटिकु एवं म्यूजिक रे सजेइछंती जगदीश जी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही करता है,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर पूरी खबर।
2: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जा। ओ खई।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

इसलिए भी विशेष है क्योंकि मयूरभंज की धरती पर पली बड़ी उड़ीसा की बेटी माननीय राष्ट्रपति जी हमारे बीच उपस्थित है। आज उनका जन्मदिन भी है। मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं उनके दीर्घायु होने और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। जगन्नाथ जी भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं। उड़ीसा की बेटी आज देश के इतने बड़े पद पर पहुंची है, हमारा मार्गदर्शन कर रही है, ये हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है। राष्ट्रपति जी का व्यक्तित्व, उनका उदार और सहृदय स्वभाव, राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए उनका अटल समर्पण, उन्होंने मयूरभंज ही नहीं पूरे उड़ीसा की पहचान सशक्त की है। मैं इस अवसर पर उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये कार्यक्रम जब बना तो इसमें मूल कारण तो लॉजिस्टिक था। लंबे अरसे से यहां आने के लिए चर्चा चल रही थी लेकिन कोई तालमेल नहीं बैठता था। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कोलकाता में तय हुआ तो फिर मैंने कहा अच्छा है, आज बंग दिवस भी है तो क्यों न मैं सुबह मयूरभंज होकर के शाम को फिर कोलकाता के कार्यक्रम में जाऊं। और इसके कारण ये 20 जून तय हुई। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी मंगल कामनाएं ईश्वर अधीन होती है और इसलिए आज एक शुभ मंगल हो गया कि राष्ट्रपति जी का जन्मदिन भी मुझे आज उनके गांव में जाकर के उनको शुभकामनाएं देने का अवसर मिला। साथियों, आज मैं राष्ट्रपति जी के साथ पहाड़पुर भी गया था, मैं क्षेत्र के बच्चों के लिए उनके द्वारा बनाए गए स्कूल भी गया, बच्चों के साथ कुछ यादगार समय बिताने का अवसर मुझे मिला। मैं देख रहा था बच्चों के चेहरों की चमक, राष्ट्रपति जी की उपस्थिति और आत्मीयता, वहां मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा किसी बच्चे को ये लगा हो कि राष्ट्रपति जी आई है। हर बच्चे को लगता था उनकी मां आई है। ये बच्चे भी बहुत भाग्यवान है, कैसे इस क्षेत्र के गरीब वंचित और आदिवासी समाज के बच्चों को प्रेरणा मिल रही, उन्हें देश के लिए कुछ बड़ा करने का आत्मविश्वास मिल रहा है। मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं कि उन्होंने इन अनुभवों से गुजरने का आज मुझे अवसर दिया। ये मेरा दिन एक प्रकार से मेरी शिक्षा का दिवस था, कुछ सीखने का अवसर था मेरे लिए। साथियों, मैं आपको सरकार का ये निर्णय भी बताना चाहता हूं कि पहाड़पुर गांव को अब तेजी से सूर्य ग्राम सोलर विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। यानी यहां हर घर में सोलर बिजली बने, इसे सुनिश्चित किया जाएगा। और हम तो बड़ा गर्व के साथ कह सकते हैं कि यही उड़ीसा है जहां कोणार्क में सूर्य मंदिर की एक पहचान है, वैसे ही पहाड़पुर सूर्य ग्राम की पहचान बन जाएगा। सूर्य घर के ये पूरा गांव सोलर विलेज के रूप में पहचाना जाए, इस दिशा में काम तुरंत शुरू हो ऐसी मेरा प्रयास रहेगा। इस अभियान से पहाड़पुर के लोगों को मुफ्त सोलर बिजली भी मिलेगी और ज्यादा बिजली होगी वो उनकी आय भी बढ़ाएगी। साथियों, उड़ीसा में डबल इंजन सरकार के 2 साल कई मायनों में ऐतिहासिक रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी के नेतृत्व में आज उड़ीसा तेज गति

से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आज यहां गरीब कल्याण की योजनाओं से सामान्य मानवी का जीवन बदल रहा है। ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। यहां रोजगार के नए अवसरों के लिए तेजी से काम हो रहा है। साथियों, केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है। आज ओडिशा खुद इस बदलाव का साक्षी बन रहा है। साथियों, ओडिशा के पास समुद्र है, खनिज संपदा है, कृषि की शक्ति है और सबसे सामर्थ्यवान यहां युवा प्रतिभा है। इस सामर्थ्य का पूरा उपयोग करने के लिए हम मिलकर काम कर रहे हैं। इसलिए आज ओडिशा में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड निवेश हो रहा है, नई सड़कें और आर्थिक कॉरिडोर बन रहे हैं, पोर्ट्स का विस्तार हो रहा है, ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी और आधुनिक उद्योगों में निवेश आ रहा है। आज भी यहां ओडिशा के विकास से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इन परियोजनाओं पर लगभग 47,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिजली, सड़क, रेलवे, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी इन परियोजनाओं से आप सभी लोगों को बहुत सुविधा होने वाली है। मैं इन परियोजनाओं के लिए उड़ीसा के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता। साथियों, हमारी सरकार उड़ीसा के संसाधनों को उड़ीसा की संभावनाओं में बदल रही है। उड़ीसा में बड़ा निवेश आए, यहां नए उद्योग लगे, इसके लिए उत्कर्ष उड़ीसा जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके तहत अब तक करीब 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की अनेक मेगा परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है। उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बने, इसके लिए उड़ीसा के समग्र विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। पावर सेक्टर में 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हो रहा है। समृद्ध शहर योजना के तहत शहरी विकास को गति दी जा रही है। आने वाले वर्षों में इन प्रयासों का परिणाम हमें देखने को मिलने वाला है। साथियों, डबल इंजन सरकार की डबल विशेषता यह है कि वो खुद जनता तक पहुंचती है। हमारा प्रयास है कि सामान्य नागरिक को किसी समस्या के समाधान के लिए अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़े। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि युवाओं, महिलाओं, किसानों और आम लोगों की अपेक्षाएं आज पूरी हो रही है। आप देखिए, धान खरीद में किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल देने का निर्णय लिया गया। सुभद्रा योजना के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक माताओं और बहनों तक आर्थिक सहायता पहुंचाई गई। आयुष्मान भारत को लागू करके ओडिशा के परिवारों के लिए देश भर के अस्पतालों में इलाज का रास्ता खोला गया। आदिवासी विद्यार्थियों की पढ़ाई बीच में न छूटे, इसके लिए माधोसी हाथ खर्चा योजना शुरू की गई। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए श्री मंदिर के श्रद्धालुओं के लिए सारे द्वार खोल दिए गए, चारों चार द्वार खोल दिए गए। डबल इंजन की

ताकत मिलने से आज यहां चारों दिशाओं में विकास सुनिश्चित हो रहा है। साथियों, यहां बीते दिनों स्वच्छता को लेकर जो विशेष अभियान चला है उसकी भी मुझे जानकारी मिली है, और मैं देख रहा था सोशल मीडिया में तो सफाई अभियान छाया हुआ है। यानी स्वच्छता से स्वागत, मैं उड़ीसा की इस पहल के लिए यहां के नागरिकों का, सरकार का, मुख्यमंत्री जी का, इस प्रशंसनीय पहल के लिए बहुत ही प्रशंसा करता हूं, संतोष व्यक्त करता हूं। साथियों, स्वच्छता हमारे जीवन शैली का हिस्सा होनी चाहिए, हर रोज की आदत होनी चाहिए। मैं यहां स्वच्छता अभियान से जुड़े सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैंने अपने जीवन का कुछ महत्वपूर्ण कालखंड जनजातीय क्षेत्रों में एक वॉलेंटियर के रूप में काम करते हुए बिताया है। माननीय राष्ट्रपति जी तो बरसों तक ऐसे क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करती रही है। आप और हम जानते हैं कि जनजातीय क्षेत्रों में जीवन की सुविधाएं आसानी से नहीं पहुंचती थी, इसलिए हमारी सरकार ने जनजातीय विकास को बहुत प्राथमिकता दी। हमने ऐसे इलाकों को सुविधाओं से जोड़ने के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया। इसके तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, आवास से जुड़े विभाग मिलकर के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं, ताकि वहां रहने वाले लोगों की कठिनाइयां दूर हो सके। इसी तरह पीएम जनमन अभियान तो राष्ट्रपति जी के साथ हुई चर्चाओं का, उनके मार्गदर्शन का ही परिणाम है। ये विशेष रूप से देश के ऐसे जनजातीय समूहों के लिए है जो जनजातीय समुदाय में भी सबसे पीछे रह गए हैं। ऐसे जनजातीय समुदायों तक अब सरकार स्वयं चलकर उनके गांव, उनके दरवाजे तक पहुंच रही है। साथियों, आदिवासी समाज के उत्थान के लिए हम आदिवासी युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसरों से जोड़ रहे हैं। इन बच्चों को पढ़ाई की बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए देश में करीब 500 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले गए हैं, करीब 750 एकलव्य स्कूल स्वीकृत किए गए हैं। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक लेवल पर 1.5 करोड़ से अधिक आदिवासी बच्चों को सैकड़ों करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी गई है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि हम मयूरभंज में एक और नवोदय विद्यालय बनाने के लिए भी स्वीकृति दे दी गई है। साथियों, दूर दराज इलाकों में रहने के कारण जनजातीय समाज स्वास्थ्य से जुड़ी कठिनाइयों का भी शिकार रहा। सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियां एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। हमने इनके खिलाफ देश भर में अभियान चलाया, 4 करोड़ से ज्यादा हेल्थ कार्ड बांटे, मुफ्त इलाज के लिए करोड़ों आदिवासी लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड दिए, जल जीवन मिशन के तहत घर घर साफ पानी पहुंचाया जा रहा है। इन प्रयासों का परिणाम आज हमें दिख रहा है। आदिवासी समाज दशकों पुरानी कठिनाइयों से बाहर आ रहा है और विकास की मुख्यधारा का हिस्सा बन रहा है। साथियों, आने वाले समय में हमारे सामने 2 महत्वपूर्ण पड़ाव है। 2036 में उड़ीसा के गठन के 100 वर्ष पूरे होंगे और 2047 में भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने वाले। यानी उड़ीसा और देश का लक्ष्य एक ही दिशा में है। उड़ीसा की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो भारत मजबूत होगा। मुझे उड़ीसा के सामर्थ्य पर भरोसा है।

0: मिलकर ओडिशा को विकास की बुलंदियों पर पहुंचा रहा है। साथियों, कल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। ज्ञान और योग की धरती ओडिशा, योग यहां के संस्कारों का हिस्सा रहा है। मैं ओडिशा की धरती से, पूरे देश से, पूरी दुनिया के लोगों से आह्वान करता हूं, आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में योग दिवस में हिस्सा लें। मैं एक बार फिर आप सभी को आज के अवसर और विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं माननीय राष्ट्रपति जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं कि मुझे उनके साथ उनकी कर्मभूमि को देखने का मौका मिला। एक बार फिर उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।
1: ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री निजर भाषण रे गत 2 वर्ष रे ओडिशार उल्लेखनीय अग्रगति संपर्क रे जनसाधारण को सूचना देथिले।
2: जय जगन्नाथ। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कुंभन पाटी जी, माननीय उपमुख्यमंत्री श्री कनक वर्धन सिंहदेव जी, माननीय उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिडा जी, माननीय मंत्री गृह निर्माण नगर उन्नयन सरकारी उद्योग डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र जी, माननीय मंत्री जंगल परिवेश जलवायु परिवर्तन श्रम कर्मचारी राज्य बीमा श्री गणेश राम सिंह खुंटिया जी, माननीय सांसद तथा राज्य सभापति भारतीय जनता पार्टी ओडिशा शाखा श्री मनमोहन सामल जी, माननीय सांसद मयूरभंज नवचरण माझी जी, माननीय सांसद केन्द्रापड़ा तथा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री वैजयंत पंडा जी, एही कार्यक्रम रे उपस्थित मंत्री सांसद विधायक गण एवं मयूरभंज और सारा ओडिशार प्रिय भाई और भौनी माने, जोहार गोसाई मारांगबुरु, जोहार गोसाई जाहेरायो, जोहार गोसाई मणिक आर तुरैक थानामक एड़ी एड़ी जोहार, समस्त नमस्कार, जुहार आउ अभिनंदन। आज रही मुहूर्त टी ओडिशा इतिहास एक सन्नाव क्षण, आज रही ऐतिहासिक दिन ओडिशा इतिहास रे एक गौरवमय अध्याय भावे ये लिपिबद्ध हो रही। गोटे मंच रे देशर महामहिम राष्ट्रपति यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी एवं ओडिशार राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री उपस्थित हो एक विशेष अवसर को पालन करिबा निश्चित भावे ओडिशा पाई एक गौरवमय मुहूर्त। सर्वप्रथमे महामहिम राष्ट्रपति 68वें शुभ जन्म दिन रे मुतांकु हृदयर गभीरतम प्रदेश तरफ शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाउछ। एही अवसर रे मु महामहिम राष्ट्रपति एवं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को 4.5 कोटी ओडिशावासी पक्षरु स्वागत करूछि। राष्ट्रपति महोदया, आपणकर सारा जीवन मां भारतीर सेवारे उत्सर्गीकृत, त्याग सेवा और समर्पणर आपण हेउछन्ति मूर्तिमंत प्रतीक। आपणकर शांत सरल जीवन हेउछि एक आध्यात्मिक शक्तिर प्रतीक। एही मयूरभंज जिल्लार एक अनामधेय जनजाति अधिसूचित ग्रामरु जीवनर यात्रा आरंभ करि देशर सर्वोच्च संवैधानिक पद अलंकृत करिबा कौनसी एक चमत्कार नुहे। एहा आपणकर कठिन परिश्रम, उत्सर्गीकृत जनसेवा एवं देशर संवैधानिक विधि व्यवस्था रे आपणकर ये पूर्ण विश्वास आपण सारा देशर महिलांकर पई प्रेरणार एक महान उत्स। आजर ए पवित्र अवसर रे मु आपणकर दीर्घ निरामय जीवन कामना करिबा सहित महाप्रभु श्री जगन्नाथंक निकट रे आपणकर पई सुख और शांति कामना करूछ। यशस्वी प्रधानमंत्री निजे उपस्थित रही आपणक जन्म दिवस को आहुरी गौरवमय करिछंती। मु समस्त ओडिशावासी तरफ रु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को सहृदय धन्यवाद ज्ञापन करूछ। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार की 2 वर्ष गांठ उत्सव के अवसर पर आपकी सदैव उपस्थिति के लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ। सरकार की शपथ ग्रहण समारोह से लेकर पहली वर्ष गांठ और आज के ये अवसर तक आप 8 बार ओडिशा पधारे हैं। हर बार ओडिशा के लिए आप ढेर सारा प्यार और विकास का तोहफा लेकर आए हैं। ओडिशा के लिए आपका भरोसा, आपका प्यार, आपका सहयोग हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। कुछ दिन पहले केंद्र में

आपके नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सेवा सुशासन और भारत के सुनहरे दिन के 12 साल पूरे किए हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, बल्कि गर्व के साथ कहता हूं कि पिछले 12 साल देश के लिए बेमिसाल रहा है। 2014 के बाद आपने जो योजनाएं बनाए हैं उसकी बदौलत देश के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ फायदा हमको मिला है। मैं तो कहता हूं कि देयर इज ए लिटिल बिट ऑफ मोदी इन एवरी वन्स लाइफ। लोगों के कल्याण के लिए आपकी प्रतिबद्धता से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार ने पिछले 2 सालों से ऐसे काम कर रहे हैं कि आज इफ देयर इज नो टमोरो। बहुत कम दिनों में हमारी सरकार ने बहुत सारी कल्याणकारी योजना जैसी महिलाएं के लिए सुभद्रा योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना, अन्नदाताओं के लिए कृषक समृद्धि योजना, स्कूल के बच्चों के लिए गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना, बुजुर्गों के लिए श्री जगन्नाथ दर्श योजना, राज्यवासियों के लिए आयुष्मान योजना लागू किए हैं। प्रधानमंत्री जी, हाल ही में हमारी सरकार राज्यों में केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा को निःशुल्क बनाने के लिए तय किया है। ऐसे पदक्षेप लेने में ओडिशा शायद देश में पहला राज्य है। आर्थिक और सामाजिक तौर पे पिछड़े वर्गों के लिए कई दशकों से लंबित आरक्षण लागू की है, जो कि साधारण शिक्षा के लेकर मेडिकल टेक्निकल शिक्षा में भी वो लागू होगा। और एक महत्वपूर्ण दिशा में हम जोर दे रहे हैं, ओडिशा में उद्योग का विकास। पिछले साल आपके कर कमल से उत्कर्ष ओडिशा, मेक इन ओडिशा सम्मेलन से शुरू हुआ दूसरा शिल्प विप्लव अब चरम स्तर पर है। ये सब कार्यक्रम 2036 तक समृद्ध ओडिशा और 2047 तक विकसित भारत बनाने में योगदान देगा। मैं एक तथ्य रखना चाहूंगा, अब तक हम 3.11 लाख करोड़ रुपया के 152 प्रकल्पों का उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं, जिससे 2,50,000 नियुक्ति का अवसर मिला है। सरकारी क्षेत्र में भी हम 44,000 से ज्यादा नौकरी भी दिए हैं। हमारे 30 जिलों में से 29 जिलों में उद्योग स्थापित हो रहा है। हमारा शिल्पायन अभियान संपूर्ण रूप से एक समावेशी प्रक्रिया है। मुझे पूरा भरोसा है आगे चल के ओडिशा के लोग रोजगार के लिए बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि दूसरे राज्यों से लोग नौकरी के लिए ओडिशा आएंगे। ओडिशा के माइग्रेशन नहीं बल्कि रिवर्स माइग्रेशन अभी शुरू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब हमारे आलोचक पूछते हैं डबल इंजन सरकार से ओडिशा को क्या मिला है, तो मैं जवाब देता हूं कि 90,000 करोड़ की रेल परियोजना, 40,000 करोड़ की सड़क परियोजना हमको इस डबल इंजन सरकार में ही मिला है। और उसमें उसके साथ साथ हमको एक बहुत बड़ा पोर्ट मिला है, बाहुडा पोर्ट, जिसमें से 25,000 करोड़ को मिला है। उसमें से भी एक जहाज निर्माण करने के लिए, जहाज को रिपेयर करने के लिए भी एक प्रोजेक्ट हमको 25,000 करोड़ के भी केंद्र तरफ से मिला है। और भी और उसके साथ साथ हमको भी एक पेट्रोकेमिकल्स के बारे में IOCL तरफ से भी हमको 80,000 करोड़ की प्रपोजल अभी काम शुरू होने जा रहा है। इसके साथ 5,000 करोड़ की भुवनेश्वर कटक पूरी पारादीप आर्थिक कॉरिडोर भी हमको मिला है। और आज शुरू हो रहा 50,000 करोड़ के विभिन्न परियोजनाओं इसका प्रमाण है। उपस्थित बंधुगण, गत 2 वर्ष रे आपणकर सरकार कायो मनोवाक्य रे आपणकर सेवा करी चली। एही समय मध्य रे अनेक प्रतिबंधक सत्ते राज्यर महिला, गरीब, अन्नदाता, युववर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पछुआ वर्गक पई अनेक नूतन कार्यक्रम आ योजना मान आम सरकार प्रयोजन करी सारी, जहाँ फल विकास गति रे तीव्रता आसी। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, जीवन जीविका और शिल्प क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आज ओडिशा क्षेत्र में आसी। सरकार उदार शिल्प नीति जगू आज आम राज्य शिल्पपति प्रथम पसंदर राज्य भाव आज ओडिशा आपने ढड़ा हो। 2 वर्ष पूर्ति उपलक्षे ओडिशावासी को प्रतिश्रुति दौर राज्य कल्याण आम उद्यम कौन सी प्रकार कम हम ना आपण समस्त उद्यम आम निश्चित भाव 2036 समृद्ध ओडिशा ये लक्ष्य हासिल करिबा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भाव्य दायित्व ग्रहण करवा दिनरु
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: यह मोर आंतरिक कामना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को

0: कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रूपये जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसान को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रह का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: कार्यक्रम आकाशवाणी कटक
3: मुख्य संवाद सह आशुतोष पति। पीएम किसान योजनार 23तम किस्ती अर्थ प्रदान कले प्रधानमंत्री। 9,44,00,000 अधिक चाषी को मिलला 18,880 कोटी टंकार अर्थराशि। मयूरभंज जिलार रायरंगपुरठारे 47,000 कोटी अधिक टंकार विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास कले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। वार्धक्यरे सुस्थता पाई योग प्रसंग आधार में आसंताकाली अनुष्ठित हेबो आंतर्जातिक योग दिवस। नीट UG पुनः परीक्षा आसंताकाली अनुष्ठित हेबो। परीक्षा देबे 22,79,000 अधिक छात्र छात्री। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 पाई प्रथम तीर्थयात्री दल आज नथुला पास दे चीन प्रवेश करिसेंति। लेबानन उपरे इजराइल पक्षरु क्रमागत आक्रमण करा प्रतिवादरे आज ईरान पुणी हरमुज प्रणाली को बंद कर देछि। चेन्नई दिनिकिया एक दिवस क्रिकेट मैच रे भारत अफगानिस्तान को 9 विकेट परास्त करिछि। 218 रन रो विजय लक्ष्य को भारत 28 ओवर 4 बॉल खेली 1 विकेट विनिमय रे हासिल करनेथिला। ए विजय से भारत सीरीज को 3-0 रे जीति नैछि। फिफा वर्ल्ड कप रे आज पाराग्वे तुर्की को 1-0 गोल रे परास्त करिछि। तुर्की दल एहि पराजय सह चलित विश्वकप रु प्रथम दल भाबे विदाय नैछि। आज अन्य एक मैच रे ब्राजिल हाइती को 3-0 गोल रे परास्त करिछि एवं एबे नेदरलैंड्स और स्वीडन मध्यरे मुकाबिला जारी रही। मुख्य संवाद आज एतिक रे शेष हेला।

सूर्य देवतांक किरणरु आरंभ हुए गोटे नुआ सकाळ प्रभु नारायणंकर नामरु आरंभ हुए गोटे नुआ दिनर आसंतु ए नुआ दिनकु स्वागत करिबा प्रभुंक नाम जप आरंभ करिबा आजिर ए दिन

अञ्जलि मोर भरिदिय प्रभु भकत भकति रतन हे कारण भक्ति रे अछि अनेक शक्ति भक्ति हेउछि ईश्वर को पाइबार सरल माध्यम भक्तर भक्ति रे ही से शक्ति अछि जा द्वारा प्रभु नारायण कृपा मिलिथाय।

श्रोता बंधु वर्तमान आपण शुणुले अति बड़ी जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद भागवत एक स्तरीतम अध्याय ए अध्याय बेतार संपादन करथिले डॉक्टर विचित्रानंद महांती पूर्वाभास रचना डॉक्टर दासरथी दास संगीत परिचालना करथिले ताराकांत पंडा वर्णना करथिले बसंत महांती एवं प्रयोजना सुहास महांती।

नुआ दिन नुआ किछि स्वप्न नुआ आशा किछि नुआ प्रेरणा नुआ दिन र नुआ सकलरे मन रे बांधी नुआ आशा उड़ीजिबा में निज स्वप्न आकाश रे श्रोता बंधु ट्यून करिछन्दि आपण माने 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कर एक दिल सी दिल तक आपण को कोयल छि आपण मानक साथ आजी रो एई शुभ सकाळ को आहुरी भी शुभ आहुरी भी मधुर करबा पई आपण को कोयल आसी पहुंचे सारी छि आपण मानक को अनेक अनेक शुभेच्छा आजी रो ए नुआ शुभ सकाळ रो आसंत निज मन रे जो स्वप्न रो डीणा में बांधी छे ना सेई जगह को हमें उड़ी जिबा निज मन रो किछि आशा को नै आजी रे नुआ सकाळ को आरंभ करबा गुटे पॉजिटिव एनर्जी सहित

0: वेलकम बैक श्रोता बंधु
1: सुनी मैंने 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कट एक दिल से दिल तक कोयल आपरे आग को चेष्टा कर तेज जदि आम देखा आज दिन बहुत किसी कथा रही आज दिन को विश्व सिकल सेल दिवस रक्त सिकुली दिवस भाव पालन करुचे आमे सारा विश्व रे पालन करा जाउची मुख्य उद्देश्य होउची सिकल सेल्स रोग माने गोटे प्रकार रक्तहीनता वंशगत रोग रक्त सिकुड़ी दिवस भाव रे आज ए दिन को पालन करा जाउची आउ ए विषय रे लोकों मध्ये बेसी सचेतनता सृष्टि करिबा आउ एथिरे पीड़ित रोगी मानकर चिकित्सा पई सहायता जोगाई दबा पाई कि यही कार्यक्रम ए दिन टी पालन करा जाउची ता सहित आज दिन टी जातिसंघ द्वारा पालन करा जाउची प्रतिवर्ष जून 19 तारीख को युद्ध व संघर्ष समय रे महिला और शिशु मानक उपरे हेउथिबा जौन हिंसा को रोकिबा एवं या विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करिबा पई आज दिन टी इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कन्फ्लिक्ट भाव रे पालन करा जाउची यार मुख्य उद्देश्य होउची ए सब विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करिबा ता सहित विश्व सेंटरिंग दिवस भाव मध्य आज दिन टी पालन कर आजिकाल व्यस्तबहुल जीवन भितर दौड़ा दौड़ी नक जीवन को धीरे सुस्थे केमती उपभोग कर प्रकृति सहित केमती किसी समय बीतई पार ये सब विषय बेसी सचेतनता सृष्टि करने लोक प्रेरणा देवाई आज दिन टी पालन कराए सहित आज खास दिन जदि आपण जीवन में किसी भी खास रही जमीक आपण हापी बर्थडे अच्छी आप मैरेज एनिवर्सरी किसी भी कथा रही आपण को खुशी दौर से आपको अनेक अनेक शुभेच्छा।

0: यात्रा विकसित तो कहानी लिखी लोक सरकार
1: समृद्ध ओडिशा सुदृढ़ भित्तिभूमि संजोग समृद्धि और सशक्तिकरण नुआ अध्याय लिखी लोक सरकार मुख्यमंत्री शक्ति विकास योजना माध्यम विद्युत भित्तिभूमि सुदृढ़ीकरण
0: सुस्थ ओडिशा समृद्ध ओडिशा गाँव ठू सहर सबुठी मिलुची उन्नत चिकित्सा सेवा और सामाजिक सुरक्षा आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्राथमिक स्वास्थ्य भित्तिभूमि व्यापक सुदृढ़ीकरण
1: विकसित ओडिशा नुआ परिचय ज्ञान दक्षता और सुजोग से लोक सरकार नहीं आसी गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय माध्यम ग्रामांचल गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा शिक्षा अग्रगति दक्षतार सशक्तिकरण विकसित ओडिशा संकल्प
0: विकास धारा ओडिशा सारा
2: श्रोताबंधु एपर्यंत शुणुले आपण मैंने शुभ सकाळ कार्यक्रम तेज

किचिरिमिचिरी शब्द आउ प्रकृति र सब जीव आमको गोटे सकारात्मक चिंताधारा आड़ नहीं जाए थाए एमती गोटे सुंदर परिवेश रे चलंतु आज दिन समय रे आगो को बढ़ी चलिबा जीवन रास्ता रे आगो को बढ़ी चलिबा किछि सुंदर गीत सहित आपन को पाई ए मेलोडियस ट्रैक एंजॉय करंतु।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

म्युझिकली युअर्स आकाशवाणी एफ एम रेनबो कटे दिल से दिल तक वन्स अगेन स्वागत करुछी आपण मानक मु आपण को कोयार श्रोता मु जानी छी आपण अपेक्षा करी रही थिबे कि केते बळे आज कॉल करिवार मौका मिलबा आ आपण कॉल करी कि मो सहित कथा हबे मु भी बहुत बहुत बहुत अपेक्षा करथिली आपण मानक सहित कथा हवा पई तबे श्रोता बंधु आज रे ब्यूटीफुल टाइम को आरंभ करबा कटे लवली ट्रैक रु किंतु ता सहित मु जानिबा पई चाही भी देखंतु गीत तो मु आपनको बहुत गुडाय सुनाए सकल सकल एमती गीत भी सुनाए जोटा कि आपनको मन को आउट के खुशी रे भरी दबो ताजा पण रे भरी दबो काहे कि ना गीतर विभिन्न प्रकार रो फील थाए तार अनुभूति थाए विभिन्न सिचुएशन को नहीं कि विभिन्न परिस्थिति को नहीं कि विभिन्न प्रकार गीत कंपोज सब करमती किसी गीत थाए जोटा शुणिले आमको बहुत भल लगे आ बारंबार से गीत शुणा को भल लगे सेमती गीत टी आपण जीवन में कौन अच्छी मानते को गीत शुणिले आपण मन भल हो जाए मन बहुत खराब थाए टे खराब खराब फिल करू थाए मन दुख थाए कि एमती को गोटे गीत निहाती आपण जीवन में थी जहाँ सुनला परे आपन को फुल एनर्जी मिलुथबो जहाँ को सुनला परे आपन को मन भल हो जाउथबो तो सही गीत विषय मो सहित शेयर करंतु कॉल करबा पय नंबर टी हेउछि 0671203135 3 ए नंबर रे फटाफट कॉल करंतु ता भीतर मु सुनै दउछि आपन गोटे लवली ट्रैक

0: जय जगन्नाथ नमस्कार
1: नमस्कार के कहते
0: रेडियो लभर नारायण प्रधान बी ब्रह्मपुर बुगुड़ा जिला
1: गंजे आपणकर पसंद रीत जो गायले
0: आज्ञा
1: केतर आप शुणा गीत
0: गीतटा तो मुझे सब प्राय शुणे मोबाइल यूट्यूब रु बहुत भल लगे आीतटा गोटे हृदय दरद भरा गीत
1: ठीक अच्छे थैंक यू सो मच आप कल कले शेयर कले रही नमस्कार
0: नमस्कार।

0: ଗୀତ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ, କେତେବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଏ?
1: ହଁ ମ୍ୟାଡମ୍, ଭଲ ଲାଗେ, ମନଟା ଟିକେ ଖୁସି ରହେ।
0: थैंक यू, थैंक यू सो मच आपण कॉल कले आ शेयर कले रहिले। नमस्कार।
1: नमस्कार मॅडम।
0: श्रोता बंधु आपण मध्ये कॉल करंतु 0671230315 नंबर या मो सहित शेयर करंतु को गीत एमती अछि जोटा सुनला परे आपणको मनको पूरा रिलॅक्स लागे आउ आपणको मनको सी बदलै भी देई पारे। गीतर माधुर्यता, गीतर मिठास जेतेबेळे आम जीवन रे गोळै हि जाय ना सेतेबेळे आम जीवनटा हि मिठा हि जाय। देखिबा वर्तमान के अछंदी मोर बंधु फोन लाइन रे। हेलो।
2: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार, किए कहते?
2: साई कहूँ बेलपड़
0: साई, बहुत दिन पर
2: पूरा बढ़िया अच्छे
0: मुझे भल कौ गीत भल लगे साई?
2: मत तो सब गीत शुणा भल लगे, हिंदी हाउ ओडिया हाउ भजन हाउ सब भल लगे। बेसी कुमार सानू आ मोहम्मद अजीज आंकर बेसी शुणे, ईरा महांती गीत सब मत बेसी भल लगे। मोर फेवरेट सॉन्ग हूँ भजन ने मत गोटे गीत बहुत बढ़िया लगे, मुझे दीपद गायक शुणे
0: दौजे।
2: मत सिंह द्वार रु स्वर्ग द्वार जाए बाटे नब को करे जणाण, हाय रे मो चक्का बदन, हाय रे मो चक्का बदन। मत श्री गुंडीचा दिन न मारिलु नाही दे मारी हेरा पंचमी दिन, हाय रे मो चक्का बदन, हाय रे मो चक्का बदन।
0: साई बहुत बढ़िया गीत गाउछ तमे, बढ़िया लगिला मते तुम मुहर गीत सुनिके। थैंक यू सो मच कॉल करथिबार।
2: धन्यवाद दीदी, रहली। नमस्कार।
0: नमस्कार। तेज आप कल कर नंबर टी आउ थे सेयर करदे 0671230315 आउ गोटे कल भी आई कल टी नहीं जा बर्तमान। हेलो।
3: नमस्कार कोयल मैम।
0: नमस्कार, कि कहते?
3: समीर पंडा कहलेगा।
0: कमी अच्छा?
3: भल अच्छे आज्ञा।
0: कहतु आपण को पसंदीदा गीत कौटा जो आप मन को परिवर्तन कर दिए?
3: सब गीत भल लगे, वैरायटी मु मेंटेन करे। सब गीत भितरे भी किसी बछा बछा गीत मार्का मरा गीत
0: अच्छी,
3: जमती की सौतन फिल्म रो जिंदगी चार का गीत है, माने से गीत रे से जो शब्द संयोजन है जीवन रो जीवन चर्या रो प्रतिटी मुहूर्त प्रतिटी कथा को सेते बखणा जाई सुंदर स्वर रे सजेकी जेतले गाई दिछन तार मर्म बुझिले जीवन रो प्रकृत अर्थ बुझा पड़ा आ दुख थिले मन भीतर टिके एनर्जी चली आसो। आउ गोटे गीत अच्छी अमृत फिल्म रो, दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है। आमे सब बेले मान दुखे रहुचंति बा आमे अन्य को तुलना कर देउचंति किंतु से गीत आमको सिखाए जे आमठु भी आहुरी हीनस्ता रे आउठी आहुरी दयनीय अवस्था रे लोक मैंने अच्छा तेणु सब बेले जेतिकी मिलुची सेतिकी संतुष्ट हबा एवं अन्य मानक प्रति टिके सदेव दया परवश हबा से गीत सिखाए। एमती अनेक गीत अच्छी खुनमरी मांगर भी जीने के वाहने लाख हुए मान जीवन जीवार तरीका भिन्न भिन्न प्रकार अच्छी ताको जीवार कौशल कला कौशल को अख्तियार करवा मान ही जीवन एमती मान गीत माध्यम बुझे दिया जाए कि जीवन प्रकृत संज्ञा। आउ गोटे गीत ओडिया फिल्म रो मु भारी भल पाए love.com रो सब पापर प्रायश्चित थाए सब भूल रो क्षमा। प्रकृत रे माने शब्द माध्यम रे एमिती से गीत को सजेई दीचंती जीवन रो कथा एमिती बुझेई दीचंती गीत सुनिले भी भल लागिबो मन दुख थिले बा मन उणा थिले से दुख भी लाग भरी जीवो।
0: निहाति बहुत सुंदर भाव रे आपण बुझेले काहेकिना आपण बुझिछंदी गीत को सेते सुंदर भाव रे। बहुत बहुत धन्यवाद समय भाई आपण कॉल कले आ शेयर कले। रहिली। नमस्कार।
3: नमस्कार।

0: अच्छा केमती अच्छा
1: बहुत बढ़िया अच्छी मैडम
0: अच्छा को गीत विषय आज कह
1: तो गीतर गोटे पगल कह गीत शुणा को मत सदा भल लगे
0: अच्छा
1: प्रत्येक गीत ओडिया हिंदी जेको रोमांटिक गीत हौ पावाजन गीत हौ आमती मोहम्मद अजीज किशोर कुमार लता मंगेशकर सबीर कुमार आमते बहुत कंठस्वर गीत शुणा भल लगे विशेषकर मत सत्यमारायण ये चला बाटी जो गीत मत बहुत भल लगे गायकनी ग्राहक रखुच मैडम नमस्कार
0: नमस्कार नमस्कार श्रोता बंधु आपण मते कॉल करंतु आम सहित शेयर करंतु को गीत एमती अछि जोटा आपण को मन को परिवर्तन करि पारे आ गोटे कॉल भी आसी छि वर्तमान कॉल टी नै जिबा हेलो
2: टिकी मिकी ओते तोर मीठा मीठा हस जई हस आम ओते थाउ बार मास हस वेंती जे नाची गई जे जीवन है कहल पा नमस्कार मुसलता साहु कहती
0: केमती अच्छा
2: भल अच्छी
0: अच्छा ये गीत टी भल लगे
2: मत आहरी बहुत भल गीत भल लगे भल लगे
0: अपराजित
2: सिद्धांत मीदास जो भल लगे मा पुख स्वरीर तो भल लगे
0: ठीक अच्छे बढ़िया गीत टी कह
2: भजन भी बहुत भल लगे मत मते चंदन पानी रे गाधे दियो लो जे
0: गीतटा
2: आ तो भल लागे
0: ठीक है जी बहुत बहुत धन्यवाद आपण कॉल कले आ शेयर कले रहिली नमस्कार
2: नमस्कार
0: सतरे आपण माने जेते बळे कॉल करछंती आ निज मनर कथा कहउछंती गोटे सुंदर सुंदर गीत विषय रे कहउछंती गीतर जो कहंती ना इम्पोर्टेंस एटा आहुरी अधिक बढ़ी जाउछी काहे कि ना गीत आम जीवन रे गोटे स्पेशल जगह रहीछी गीत पाई आ गीत बिना म्यूजिक बिना आम लाइफ टा बिल्कुल अधूरा देखिबा वर्तमान आ के अछंती फोन लाइन रे हेलो
3: हेलो
0: के कहउथले नमस्कार
3: नमस्कार
0: मुझे
3: टिकिया
0: बढ़िया आमे ओडिया भारी बढ़िया तो आगो को कौन हवा इच्छा अच्छी किसी लेक्चरशिप करिया इच्छा अच्छी अच्छा तो को गीत भल लगे
3: मत भल लगे जगन्नाथ गोटे भजन भल लगे जो नमिता अग्रवाल जगन्नाथ हो तुम झील हूँ
0: अच्छा ये गीत टा कहीं भल लगे कौन अच्छी
3: भल लगे से गीत मैंने सुनले मन गोटे भाई बेस कि भगवान मत निज झी बोली भावुच्छ निज बापा बोली
0: तो बारंबार सुनिए भल लगे गीत
3: हाउ
0: बहुत बहुत धन्यवाद शुभश्री कॉल करके मो सहित शेयर कर बाय बाय नमस्कार
3: नमस्कार
0: श्रोता बंधु आपण मनर कथा शेयर करेंगे मत मे कल करें गोटे कल टी कल टी जा गोटे बढ़िया गीत आप शुणी हेलो हेलो
4: हेलो समा सांगा जतु सपर बोल थंतु कोइल भणी
0: केमती अछंती
4: जागा सुमर मेडिकल कॉलेज टंडा ना कोची
0: केमती अछंती आपण
4: आपणंग बलपा मा सांगा सुतु बहुत भल रे अछि आशा कर मा सारा निश्चिंत आपण आपण परिवार को भल रे खुशी रे रखिबे
0: निहाती निहाती मां का आशीर्वाद तो सब बळे रही छि हम मन को ऊपर तो को गीतर आपण को भल लगे आपण को मन परिवर्तन कर परे
4: गीत भल लगे हिंदी फिल्म रे सोले गीत भजन भल लगे जीवन जौवन सब परम दान ये गीत टा भल लगे
0: अच्छा।
4: दुख कष्ट ये से दिटा बोले आउ भी गीत अच्छी एक दिन बीते जा मैटे से मोर ये गीत टा भी भल लगे चलते चलते हिंदी रत गोटे बैकग्राउंड गीत भी भल लगे आउ शेष श्रावण गोटे गीत अच्छी माजी गीत किन्तु ए जीवन जौवन गीतटा भगवान गीत से भजन टाइले दोस्ती ए दोस्ती ए दीटा गीत
0: बहुत पसंद
4: बोले शुणे
0: अच्छा।
4: ठीक है।
0: अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपण कॉल कले।

मीठे मीठे सुंदर सुंदर गीत आपण का सकाळ को आहरी भी सुमधुर करि दउ छी आहरी भी सुंदर करि दउ छी आपण का सकाळ रे ताजापण भी भरी दउ छी सेति पई त जीवन रो प्रत्येक मुहूर्त रे हम को गीत भल लागे आउ गीत सुनिबा पई गाइबा पई गुनगुन हेई गीत सहित ताळ मिसेबा पई हम को बहुत भल लागे त वर्तमान कथावार्ता चल छी कि को गीत आपण को प्रेरणा दिए त वर्तमान गोटिए कॉल आस जी छी मो पाख को देखबा के कॉल करि छन मोर बंधु हेलो

0: जय माँ शारदा।
1: जय माँ शारदा।
0: जी गुरुजन
1: जी नमस्कार। नमस्कार।
0: कोइलपा मु शारदा भाई कहू छी माँ शारदा को कंटापड़ा रु।
1: अच्छा भला छंदी।
0: आज्ञा आज्ञा।
1: अच्छा ए जो गीतटा गाइले गीतटा अपन को भलो लागे?
0: हाँ मत अपा प्रत्येक भजन भल लगे पुराणा ओडिया फिल्म गीत भल लगे।
1: को गीत गोटे गीत कहतु
0: पुराणार

0: सुभद्रा
1: का बहुत बहुत धन्यवाद आपण कॉल कले शेअर कले रहिले नमस्कार
0: जय माशाळा नमस्कार
1: तेबे श्रोता बंधु एमती आपण माने भी आपणक मनर कथा कहिले आ सुंदर सुंदर गीत विषय रे कहिले जे सब गीत आपणक प्रेरणा दिए आपणक मनक बदले दिए आपणक मनक खुशी दिए अगडे सुंदर गीत सहित आज रे कार्यक्रम को शेष करिवा आमर परवर्ती कार्यक्रम रही आपण पसंदीदा गीतर कार्यक्रम माने रेनबो एसएमएस जो थे शुणीपारे आप पसंद गीत जल्दी रेडी जानते शुणापी निज पसंद गीत मेसेज करवा आरंभ कर दिखता किमती मेसेज करेंगे से जनवि कि मुहूर्त मध्य स्टेडियम।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

सो चली कलाकार और कलाकार आज आम कथा द ब्यूटीफुल एक्ट्रेस काजोल विषय काजल जन्म होते 1974 मसीहा अगस्त मास 5 तारीख महाराष्ट्र रे छोट बलु से बहुत कॉन्फिडेंट आउ खुशी मिजाज रे क्यारिर जर्नी 90s दर्शकों ठू स्टार्ट करी वर्तमान पर्यंत पूरा पूरी जारी रही

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: 12 वर्षों में बदलता भारत माननीय प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प से प्रेरित है नालको की CSR पहल। नालको की लाडली मेधावी बेटियों के सपने को दे शिक्षा, आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य का सहारा। 2015 से शुरू हुई ये पहल आज बच्चों की है सशक्त नारी और विकसित भारत की मजबूत मिसाल। नालको की लाडली, हर बेटी की उड़ान, नए भारत का अभिमान।

के साथ ही दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे रे सिमरन से ट्रेन से आज ही मध्या से फिल्म लेके ले पूरा पूरी पूरा फिल ऐसी जाए My name is Khan Re Thanko emotion pura puri deep thila jaha darshakanko hrudaya ku bahut sara chui thila tebe suni dochi tanko film ru agote sundar sa gana tebe sunu thandu ponje dochi geeta tiku pura puri enjoy kar

काजल तंगर और नेचुरल एक्टिंग पे पाई छंदी अनेक सम्मान अनेक फिल्म फेयर अवार्ड नेशनल अवार्ड ची सिने अवार्ड यह सह से भारत सरकार पक्ष दि जा गरिमामय सम्मान पद्मश्री पुरस्कार जीति छंदी।

मुख्यमंत्री के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प से प्रेरित है नालको की CSR पहल। नालको की लाडली मेधावी बेटियों के सपने को दे शिक्षा, आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य का सहारा। 2015 से शुरू हुई ये पहल आज बन चुकी है सशक्त नारी और विकसित भारत की मजबूत मिसाल। नालको की लाडली, हर बेटी की उड़ान, नए भारत का अभिमान।

12 वर्षों में बदलता भारत माननीय प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प से प्रेरित है नालको की सीएसआर पहल नालको की लाडली मेधावी बेटियों के सपने को दे शिक्षा आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य का सहारा 2015 से शुरू हुई ये पहल आज बच्चों की है सशक्त नारी और विकसित भारत की मजबूत मिसाल नालको की लाडली हर बेटी की उड़ान नए भारत का अभिमान

12 वर्षों में बदलता भारत माननीय प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प से प्रेरित है नालको की सीएसआर पहल नालको की लाडली मेधावी बेटियों के सपने को दे शिक्षा आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य का सहारा 2015 से शुरू हुई ये पहल आज बच्चों की है सशक्त नारी और विकसित भारत की मजबूत मिसाल नालको की लाडली हर बेटी की उड़ान नए भारत का अभिमान।

0: 12 वर्षों में बदलता भारत माननीय प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प से प्रेरित है नालको की CSR पहल नालको की लाडली मेधावी बेटियों के सपने को दे शिक्षा आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य का सहारा 2015 से शुरू हुई ये पहल आज बन चुकी है सशक्त नारी और विकसित भारत की मजबूत मिसाल नालको की लाडली हर बेटी की उड़ान नए भारत का अभिमान
1: दुई वर्षर यात्रा विकसित कहानी लिखी लोकंक सरकार
2: समृद्ध ओडिशा पई सुदृढ़ भित्तिभूमि संजोग समृद्धि और सशक्तिकरण नुआ अध्याय लिखी लोकंक सरकार मुख्यमंत्री शक्ति विकास योजना माध्यम विद्युत भित्तिभूमि सुदृढ़ीकरण
1: सुस्थ ओडिशा समृद्ध ओडिशा गांठो सहर सबुठी मिलुची उन्नत चिकित्सा सेवा और सामाजिक सुरक्षा आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्राथमिक स्वास्थ्य भित्तिभूमि व्यापक सुदृढ़ीकरण
2: विकसित ओडिशा नुआ परिचय ज्ञान दक्षता और सुजोग से लोक सरकार नहीं आसी गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय मध्यम ग्रामांचल गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा शिक्षार अग्रगति दक्षतार सशक्तिकरण विकसित ओडिशा संकल्प
1: विकास धारा ओडिशा सारा
3: 12 वर्षों में बदलता भारत माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत बना विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्राथमिक एल्युमिनियम उत्पादक और इस विकास यात्रा के अग्रिम में खड़ा है नालको जो अपने रिकॉर्ड उत्पादन सतत विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा से प्रगति के नए आयाम रच रहा है और अमृत काल के नए भारत को दे रहा विकास की सशक्त गति प्रगति प्रदर्शन और राष्ट्र निर्माण का विश्वसनीय नाम नालको।

12 वर्षों में बदलता भारत, माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत बना विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्राथमिक एल्युमिनियम उत्पादक और इस विकास यात्रा के अग्रिम में खड़ा है नालको, जो अपने रिकॉर्ड उत्पादन, सतत विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा से प्रगति के नए आयाम रच रहा है और अमृत काल के नए भारत को दे रहा विकास की सशक्त गति, प्रगति, प्रदर्शन और राष्ट्र निर्माण का विश्वसनीय नाम नालको।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

सो चलीचे किछ कथा किछ गीत आउ मु अछि मोनालिसा आपनको साथीरे आपण केबे लक्ष्य करिछन्ति इंद्रधन केबे बि एकासेनी ता पूर्वरु थाए वर्षा थाए किछि कळा मेघ आउ तापरे आसे से सात रंगर खिली खिली हस प्रेम भी ठीक सेमती छोट छोट अभिमान किछि नीरवता आ किछि अपेक्षा ए सब पर ही संपर्क रे रंग आहुरी काढ़ाई जाए सब लव स्टोरी सिनेमा परी होई न थाए किंतु प्रत्येक सत प्रेम कहानी रे कोटे इंद्रतनु निहाते थिबो विश्वासर जत्नर हसर आउ बहुत सारा भल पाइबारो

12 वर्षों में बदलता भारत, माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत बना विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्राथमिक एल्युमिनियम उत्पादक और इस विकास यात्रा के अग्रिम में खड़ा है नालको, जो अपने रिकॉर्ड उत्पादन, सतत विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा से प्रगति के नए आयाम रच रहा है और अमृत काल के नए भारत को दे रहा विकास की सशक्त गति, प्रगति, प्रदर्शन और राष्ट्र निर्माण का विश्वसनीय नाम नालको।

0: बेटियों के सपने को दें शिक्षा, आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य का सहारा। 2015 से शुरू हुई ये पहल आज बच्चों की है सशक्त नारी और विकसित भारत की मजबूत मिसाल। नालको की लाडली, हर बेटी की उड़ान, नए भारत का अभिमान।
1: लोकंक सरकारंकर 2 वर्षर गौरवमय सफलतार यात्रा एबे देछि ओडिसा को सफलता।
2: बिहनरु बजार, संग्रहरु बंटन, समस्तंक हितरे लोकंक सरकार। समृद्ध कृषक योजना रे चासी भाई भौनी मानुकु वर्धित हाररे एमएसपी मिलुछि। त्वरित एमएसपी प्रदान रे ओडिसा देश रे प्रथम। सीएम किसान योजना रे चासी परिवारकु आर्थिक सहयोग। मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना रे आकर्षणीय सब्सिडी। मत्स्य उत्पादन ओ रप्तानी रे राज्यर उल्लेखनीय अभिवृद्धि।
1: समृद्ध ओ सशक्त ओडिशा पाई विकास प्रतिश्रुति और जनसेवार प्रतिबद्धता। युव शक्ति दक्षता, नेतृत्व और क्रीड़ा प्रतिभा विकास पाई व्यापक कार्यक्रम।
2: विकास मूल मंत्र सुदक्ष मानव संबल, दुर्नीति मुक्त शासन।
1: विकास धारा ओडिशा सारा।
0: 12 वर्षों में बदलता भारत माननीय प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प से प्रेरित है नालको की सीएसआर पहल। नालको की लाडली, मेधावी बेटियों के सपने को दे शिक्षा, आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य का सहारा। 2015 से शुरू हुई ये पहल आज बच्चों की है सशक्त नारी और विकसित भारत की मजबूत मिसाल। नालको की लाडली, हर बेटी की उड़ान, नए भारत का अभिमान।

पढ़ाओ के संकल्प से प्रेरित है नालको की CSR पहल, नालको की लाडली, मेधावी बेटियों के सपने को दे शिक्षा, आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य का सहारा। 2015 से शुरू हुई ये पहल आज बन चुकी है सशक्त नारी और विकसित भारत की मजबूत मिसाल। नालको की लाडली, हर बेटी की उड़ान, नए भारत का अभिमान।

12 वर्षों में बदलता भारत माननीय प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प से प्रेरित है नालको की सीएसआर पहल नालको की लाडली मेधावी बेटियों के सपने को दे शिक्षा आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य का सहारा 2015 से शुरू हुई ये पहल आज बन चुकी है सशक्त नारी और विकसित भारत की मजबूत मिसाल नालको की लाडली हर बेटी की उड़ान नए भारत का अभिमान

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
0: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: अगर आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हो तो अपने आप को अपने उद्देश्य से बांधो, ना कि लोगों से। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। भीड़ में एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं हो जाते।
0: आपके सुंदर विचार के बहुत बहुत धन्यवाद कारिया जी। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखा है, नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 3 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। 12 मई को भीषण गर्मी के मौसम में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, 12 बजे से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना आवश्यक है। आगे लिखते हैं,
2: 13 मई को गर्मी में हमारा खान पान कैसे होना चाहिए और 14 मई को लू लगने पर क्या प्राथमिक उपचार करने चाहिए, इस बात की जानकारी बहुत ही सरल और सहज ढंग से समझाई गई। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों को अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
0: आगे आपने लिखा है, कारगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बयान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। इस प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उमंग टीम की ओर से इस विस्तृत विश्लेषण व प्रोत्साहन के लिए।
0: ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार और प्रशांत प्रजापति।
2: ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े लिखते हैं,
0: आज के जमाने में यदि हम सब मिलजुल कर रहें और भाईचारा बनाए रखें तो यही जिंदगी जीने का असली मजा है।
2: जी,
0: आपका कार्यक्रम हम हर रोज सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है।
2: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
0: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आगे लिखते हैं,
2: हमें आपका उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद है। हमें दिनांक 21 मई 2026 दिन गुरुवार का उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में कहानी पेड़ हमारे दोस्त बहुत ही प्रेरणादायक लगी। धन्यवाद।
0: स्वागत है आप सबका श्रोताओं एक बार फिर से ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में।
2: पिछले दिनों हमने चर्चा की लोकटक, मानसरोवर और चिल्का झीलों की, उनके बारे में जाना। तो अजीत जी, आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, देखिए, यदि सारी झीलों की चर्चा हो जाए और कश्मीर की डल झील की चर्चा न हो तो चर्चा अधूरी सी लगेगी।
2: बिल्कुल।
0: तो आइए बढ़ा

0: करते हैं आज की चर्चा को। जी, तो आपको बता दें कि डल झील भारत की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। ये श्रीनगर में स्थित है। आपको पता है, इसे कश्मीर का गहना या ज्वेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। जहां तक इसके पानी की बात है, यहां पानी झेलम नदी और आसपास के पहाड़ी झरनों से आता है। तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इसके नाम पर। नाम है डल झील। इसके बारे में मान्यता है कि डल शब्द कश्मीरी भाषा के दल शब्द से संभवतः आया है, जिसका अर्थ झील ही होता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन काल में जल से भरे विस्तृत क्षेत्र को दल कहा जाता था। बाद में यही नाम इस झील के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। श्रोताओं, डल का मतलब ही झील होता है, इसीलिए कश्मीर में इसको सिर्फ डल कहते हैं, डल झील नहीं। ये झील दुनिया भर के पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के हाउस बोट बहुत ही लोकप्रिय हैं, जिन्हें शिकारा भी कहते हैं। शिकारा एक स्थानीय शब्द है जिसका अर्थ होता है नाव। शाम को धीरे धीरे जब सूरज ढलता है तो प्रकृति का नजारा देखने लायक होता है। शिकारों पर गीत, संगीत और चाय कहवे का मजा बेजोड़ है। शिकारे पर बजाए जाने वाले पारंपरिक मुख्य कश्मीरी वाद्य यंत्र हैं संतूर, रबाब, सारंगी, सहतार और साज ए कश्मीर। ये वाद्य यंत्र और पर्वतीय गायन शिकारे पर समा बांध देता है। श्रोताओ, एक और खास बात आपको बता दें कि डल झील में भी तैरते हुए छोटे छोटे बगीचे नुमा द्वीप हैं। इन्हें फ्लोटिंग गार्डन या स्थानीय भाषा में राद कहते हैं। ये ज्यादा भारी नहीं होते, इसलिए नावों द्वारा यहाँ से वहाँ ले जाए जा सकते हैं। डल झील में जो तैरते हुए बगीचे नुमा द्वीप हैं, वे मानव निर्मित हैं, जो झील की खरपतवार और मिट्टी से बनाए जाते हैं। इन नावों पर सब्जियां, फूल और खासकर कमल के फूल उगाए जाते हैं। एक बात और श्रोताओ, इस झील में फ्लोटिंग मार्केट यानी तैरते हुए बाजार भी हैं। यहाँ अभी भी कहीं कहीं वस्तु विनिमय प्रणाली देखने को मिलती है, यानी ये सब्जी लीजिए और बदले में वो सब्जी या फल दे दीजिए। श्रोताओ, ये जानना भी बड़ा मजेदार है कि आखिर ये झील बनी कैसे। तो इसका मुख्य कारण है हिमालयी भूगर्भीय परिवर्तन। बहुत पहले हिमालय क्षेत्र में धरती की परतों के उठाव और धंसाव की प्रक्रिया से वहाँ कहीं पर्वत बने तो कहीं गहरे गड्ढे, ग्लेशियरों की बर्फ पिघली और उनका पानी नदी के रूप में घाटों और गड्ढों में जमा हुआ। डल झील इसी का परिणाम है। श्रोताओ, डल झील का पानी मीठा है। यहाँ भी प्रवासी पक्षी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन अब ये झील प्रदूषण और सिल्टेशन यानी मिट्टी भराव की समस्या से जूझ रही है। इसके समाधान के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। श्रोताओ, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। झील के किनारे शानदार शालीमार और निषाद गार्डन्स की सुंदरता देखते ही बनती है। सचमुच डल झील न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध है, बल्कि ये झील कश्मीरी जीवन शैली, संस्कृति और पर्यटन का भी प्रतीक है।
1: तो श्रोताओ, ये थी आज की हमारी जानकारी सुंदर प्यारे डल झील के बारे में।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है।
0: आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ,
1: हमारे IVRS का नंबर भी नोट कर लीजिए 8800440559। आप हमें यानी CITNCRT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी।
0: और अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है गुलिवर की विचित्र यात्राएं।
1: इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है, जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है। स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण
2: जहाज पर नौकरी करता है,
1: जो रहस्यों और रोमांच
2: नौकरी करते हुए मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की। एक बार
1: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है, कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
2: बाद में पता चला कि ये लिलिपुट द्वीप है। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने
1: विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: आश्चर्य में पड़ा सोच ही रहा था,
1: थोड़ा सा फंबल था
2: कि कोई चीज
1: तो अब आज का उमंग कार्यक्रम
2: मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर आकर
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए

0: क्या लीजिए?
1: बहुत छोटी।
0: नमस्कार।
2: कुछ देर बाद उसी प्रकार के कई प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ाए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था कि वो लोग लुढ़कते पुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने